ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 और 24 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबों का आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया।

0: था। श्री वांगचुंग 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन। मिथ्याभिमान

भारी सामानों से लदी एक बैलगाड़ी कड़कड़ाती दोपहरी में खुली सड़क पर जा रही थी। उसी राह एक कुत्ता भी जा रहा था। कुत्ते को एक जुगत सूझी, बैलगाड़ी के नीचे तो छां बनती जाती है, उसके नीचे नीचे चलूं तो चिलचिलाती धूप से बच सकता हूं, राह भी मजे मजे कट जाएगी। वह गाड़ी के नीचे हो लिया, राहत मिली, इत्मीनान से चलने लगा। इत्मीनान भी कभी कभी खुराफात की जड़ हो जाती है। राहत मिली तो दिमाग बेसिर पैर की सोचने लगा। कुत्ते को लगा ये भारी बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूं, धूप भार से बस्त बैलों को कैसे, तो इसका भान हो गया। उन्होंने आपस में मशविरा किया, एक साथ दोनों ने कंधे से जुआ पटक दिया। कुत्ता

गया, तुरंत मर गया। जिसने भी यह कथा गढ़ी होगी कुछ सीख देने के लिए ही गढ़ी होगी। मिथ्या अभिमान को, दंभ को उचित दंड मिला। सुना है संघर्ष के दिनों में वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के एक महाअधिवेशन में अरुणा आसफ अली की किसी उक्ति के उत्तर में यह कथा बताई थी। यह सच हो या न हो, मूल कथा हमारे सामने एक प्रश्न प्रस्तुत कर देती है। कल्पना कीजिए, विरादरी वालों के प्रयत्न से हो, किसी प्रत्यक्षदर्शी के प्रयत्न से हो, यह प्रसंग न्यायालय में विचारार्थ पहुंच जाता है। मान लीजिए कि न्यायाधीश के कुर्सी पर आप हैं, हत्या तो हुई है, बैलों द्वारा ही हुई है, न्याय की दृष्टि से हत्या हत्या है, रियायत की गुंजाइश सिर्फ राजा के प्रसंग में हो सकती है। यदि हत्या विशेष लाचारियों में हो या की गई हो, ध्यान दीजिए, हत्या हो गई हो, की नहीं गई हो, यहां हत्या हुई नहीं, की गई है, शरारतन की गई है। एक गलत सोच को पहचान कर, कुत्ते के भीतर उपजे अहं को जान कर, उससे किसी का अहित तो हो नहीं रहा था, क्या करेंगे आप? बैलों को फांसी पर चढ़ा देंगे या उन्हें रिहा कर देंगे? कथा रचने वाले ने बैलों के मशवरे का जिक्र तो किया, उन दोनों के आपसी तर्कों की तफसील में न गए। जुआ पटक देने के निर्णय के विरुद्ध दो में से एक यह अनुरोध तो कर सकता था कि जाने दे यार, हमारा क्या बिगाड़ रहा है। आगे जोर देने के लिए यह भी कह सकता था कि किसी का क्या बिगड़ता है। विकल्प तो था उनके पास। कुत्ते की रुग्ण सोच से वे दुखी थे, ठीक था, ऐसे मिथ्याभिमानी सोचों का विरोध तो होना ही चाहिए, पर विरोध का स्वर इतना आक्रामक न हो कि विरोध करने वाले स्वयं विवेक खो बैठे। जूलियस सीजर नाटक में ब्रूटस कहता है, मैं सीजरिज्म को मारना चाहता था, पर बिना सीजर की हत्या किए वह संभव नहीं था। सीजरिज्म खतरनाक हो चुका था। कुत्ते के भीतर जो सीजरिज्म वैचारिक आकार में था, वह किसी का अहित नहीं कर रहा था, आगे भी उससे किसी का अहित होने वाला नहीं था। ऐसे सीजरिज्म को बरजने की जरूरत थी। कुत्ता अगर विवेक खो बैठा था तो बैलों ने भी कोई विवेक सम्मत काम न किया था।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अभी 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, कर्म करने पर, उसके फल पर नहीं। इसीलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना चाहिए।

दरअसल संसार का नियम है, जो आज आपका है कल किसी और का होगा। सुख और दुख दोनों को समान मानना चाहिए।

क्रोध और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।

भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि प्रभु में मन को पूरी तरह से स्थिर हो जाना है। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की सहज अवस्था है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार चिंता के समय भी ईश्वर का चिंतन ही मन को सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है।

प्रभु का चिंतन करना हमारा काम है और हमारी चिंता करना प्रभु का काम। जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तभी वास्तविक भक्ति शुरू होती है।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड 41, 4-1।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय होगा लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यधारा। 7:30 पर समय होगा गीत संगीत का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। आठ बजकर 45 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग मेलोडी हमारे केंद्र से, और 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, और 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, और 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

शाम के पांच बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 5:02 पर इवनिंग मेलोडी, 5:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती बारी, 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना, 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 7:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से, 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार और 7:30 पर आप सुनेंगे खेल पत्रिका खेलेंगे सांसे।

7:45 पर आप सुनेंगे ऑल टाइम हिट्स, 8:15 पर फार्मेसी की तो का कार्यक्रम आपकी चाहत आप सुनेंगे, 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि के 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पोटलाइट और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से।

रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा 10:30 पर एक फिल्म से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर हमारे स्टूडियो से। तो दोस्तों ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम लोकरंग में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रूपा गीत।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं पूनम कुमारी त्रिवेदी रचित कविताएं।
1: नमस्कार, मैं पूनम त्रिवेदी अपनी कुछ कविताओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बात शुरू करती हूँ क्षणिका से। घूमने निकले हैं तेरे शहर तक जाएंगे, घूमने निकले हैं तेरे शहर तक जाएंगे, उल्फत की बातों को आज हम आजमाएंगे। अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। कहीं जश्न कहीं पसरा है सन्नाटा, कहीं दबी चिंगारी की सुगबुगाहट, कहीं बसंत कहीं पतझड़ अनंत। कहीं जश्न कहीं पसरा है सन्नाटा, कहीं दबी चिंगारी की सुगबुगाहट, कहीं बसंत कहीं पतझड़ अनंत। कहीं दिल में उलगुलान सा है, तुम बिन ये शहर बेजान सा है। कहीं साजिश कहीं खालिश दिल में, कहीं साजिश कहीं खालिश दिल में, कहीं प्रवासी परिंदों की फड़फड़ाहट, कहीं बंदिश तो कहीं रंजिश यहाँ। कहीं पिजामा में घुला भांग सा है, तुम बिन ये शहर बेजान सा है। कहीं दीवारें कहीं पड़ी दरारें, कहीं रिश्तों के बीच तनातनी। कहीं दीवारें कहीं पड़ी दरारें, कहीं रिश्तों के बीच है तनातनी। कहीं इश्क कहीं है शबाब, हर शख्स पे फाग परवान सा है, तुम बिन ये शहर बेजान सा है। आज मेरी कविताओं में ज़्यादातर बेटियों का जिक्र है। अगली कविता है बेटियां बचाई जाएंगी। बेटियां बचाई जाएंगी, बेटियां पढ़ाई जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी, बेटियां पढ़ाई जाएंगी, बेटियों की तस्वीरों से दीवारें भी सजाई जाएंगी, बेटियां सताई जाएंगी, बेटियां जलाई जाएंगी, बेटियों की अस्मत पर उंगलियां भी उठाई जाएंगी। बेटियां सताई जाएंगी, बेटियां जलाई जाएंगी, बेटियों की अस्मत पर उंगलियां भी उठाई जाएंगी। बेटियां कमतर आंकी जाएंगी, बेटियां पेट में मारी जाएंगी, खास दिवस पर ही बेटियां याद आएंगी। हाँ, बेटियां अब भी नारों में बचाई जाएंगी। अगली कविता है असली भेंट। इसमें एक बेटी का दर्द बयां है। गम न था उसे कि कितने कर्ज हो गए, गम न था उसे कि कितने कर्ज हो गए, कितनी रखी जमीन गिरवी और कितने पास रह गए। संतोष की एक गहरी सांस लेकर उसने सोचा, कम से कम बिटिया के हाथ पीले हो गए। समझाया था लाजू को, समझाया था लाजू को, लाडो से कुछ मत कहना, कि बेचा है मैंने तुम्हारा कितना गहना। पर गहने की तो उसे नहीं थी कुछ फिकर, पर गहने की तो उसे नहीं थी कुछ फिकर, क्योंकि लाडो को भेजना था उसके प्यार के घर। पर गहने की तो उसे नहीं थी कुछ फिकर, क्योंकि लाडो को भेजना था उसके पिया के घर। बिटिया ससुराल जाते वक्त खूब रोई, जाने क्या बात उसके मन में थी समाई। अपनों से बिछड़ने की पीड़ा या फिर नए रिश्तों के लिए मन में बैठा था डर। बिटिया ससुराल जाते वक्त खूब रोई, जाने क्या बात उसके मन में थी समाई। अपनों से बिछड़ने की थी पीड़ा या फिर नए रिश्तों के लिए मन में बैठा था डर। कुछ साल बाद जब होने लगी बिटिया की गोद भराई, सब खुशियों में मगन थे, केवल उसकी आंखें थी भराई। उसे खाए जा रही थी चिंता कि अब बापू क्या करेंगे, रस्मों को पूरा करने के लिए बचे खेत भी बेच देंगे। तभी उसी बीच उसके भैया की चिट्ठी थी आई। उसने लिखा कि मेरी पहली हुई है कमाई, एक इच्छा है उसको मत टालना मेरी बहना, एक इच्छा है उसको मत टालना मेरी बहना, पहली कमाई से तुझे क्या चाहिए सब सच कहना। तो सुनो बहुत खुश हूँ, सब कुछ तो लेकर थी आई। मन नाचता है बाबा के आंगन में सिर्फ तनकी हुई विदाई, मन नाचता है बाबा के आंगन में सिर्फ तनकी हुई विदाई, गले में जो अब तक अटकी थी, कहती हूँ वो बात मेरे भाई, तुम ही सबसे प्यारे हो, चाहे जितनी हुई लड़ाई। गर देना है मुझे अपनी कमाई से तोहफा, गर देना है मुझे अपनी कमाई से तोहफा, तो वचन दो कि करोगे तुम मुझसे एक वफा। बापू ने जो रखे हैं साहूकार को गिरवी खेत, बापू ने जो रखे हैं साहूकार को गिरवी खेत, छुड़ा लेना उसे वापस तुम, यही होगी मेरी असली भेंट, यही होगी मेरी असली भेंट। मेरी अगली कविता है, मैं किसान की बेटी हूँ, मेहनत कश इंसान की बेटी हूँ, हाँ मैं किसान की बेटी हूँ, मेहनत कश इंसान की बेटी हूँ, हाँ मैं एक किसान की बेटी हूँ। तन के पसीने से सींचते हैं खेत, मिट्टी की सौंधी सुगंध से भर जाता है उनका पेट, तन के पसीने से सींचते हैं खेत, मिट्टी की सौंधी सुगंध से भर जाता है उनका पेट, कहाँ फिकर है, कहाँ फिकर है उन्हें गुलगुले बिस्तर की, कहाँ फिकर है उन्हें गुलगुले बिस्तर की, बाहों का तकिया बना पुआल की चादर पर, बाहों का तकिया बना पुआल की चादर पर, काट लेते हैं जो सारी रात, ऐसे इंसान की बेटी हूँ, हाँ मैं एक किसान की बेटी हूँ। सादगी है जिनका ईमान, फसल ही है उनकी संतान, सादगी है जिनका ईमान, फसल ही है उनकी संतान, फटी बिवायों और फटे हाल हालातों से, फटी बिवायों और फटे हाल हालातों से रोज करते हैं समझौता, फटी बिवायों और फटे हाल हालातों से रोज करते हैं समझौता, प्रकृति से इनका बहुत गहरा होता है नाता, हैं जो सबके अन्नदाता, हैं जो सबके अन्नदाता, ऐसे भगवान की बेटी हूँ, हाँ मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं एक किसान की बेटी हूँ।

0: कविता है मुक्त कर दो हमें। खूबसूरत है गगन की आभा, खूबसूरत है गगन की आभा, हमें भी नई जान दे दो। खूबसूरत है गगन की आभा, हमें भी नई जान दे दो। मुक्त कर दो पिंजरे की तीलियों से, इन पंखों को परवाज दे दो। मुक्त कर दो पिंजरे की तीलियों से, इन पंखों को परवाज दे दो। कर सकें प्रेम का आगाज हर तरफ, भेंट में सारा जहान दे दो। कर सकें प्रेम का आगाज हर तरफ, भेंट में सारा जहान दे दो। धर्म है धर्म का रक्षक होना, धर्म है धर्म का रक्षक होना, ज्ञान में वेद पुराण दे दो। बिखेर दूं सोमधरा अंबर में, चोंच में गीता कुरान दे दो। बिखेर दूं सोमधरा अंबर में, चोंच में गीता कुरान दे दो। मातृभूमि से हो प्यार ऐसा, मातृभूमि से हो प्यार ऐसा, दामन में पाक ईमान दे दो। कौन सयाद बना फिरता है, कौन सयाद बना फिरता है, हम परिंदों को भी जुबान दे दो। खूबसूरत है गगन की आभा, हमें भी नई जान दे दो। खूबसूरत है गगन की आभा, हमें भी नई जान दे दो। धन्यवाद आप सबका।
1: अभी आप सुन रहे थे पूनम कुमारी त्रिवेदी रचित कविताएं। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत।

0: दोस्तों, एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम गीत संगीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं सोनू निगम के गाए गीतों को।

शख्स की, उनके जीवन की और उनके पैसे से चलने वाले आंसू की बात डॉक्टर चौथरायन के मुंह से सुनी थी। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्रोफेसर थे, इस समय प्रोफेसरी छोड़ चुके थे।

आप सुन रहे थे सोनू निगम को, जिसे हमने लिया था एल्बम चंदा की डोली से। और इसी के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुबह कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
6: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक

0: अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और जीटीआरआई को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: डीआरडीओ ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
5: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
6: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट पेपर लीक रोकने के लिए आज नए कानून के मसौदे और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर करेगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष त्वरित अदालत का किया गठन। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी छापे कार्रवाई। पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची आवास पर छापेमारी, दस्तावेज खंगाले गए। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी। साल्टोरा ब्लास्ट मामले में भारी मात्रा में डेटोनेटर के साथ दो गिरफ्तार। 16 लाख रुपए और 5 डिजिटल डिवाइस भी जब्त। मानसून की सक्रियता के बीच रांची मौसम केंद्र ने आज रांची समेत राज्य के 13 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। और रांची में संपन्न हुई 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट 2026। मेजबान रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन। खूंटी दूसरे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए तैयार विशेष मसौदे पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।

0: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में अपना अनशन समाप्त कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। शिक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे वांगचुक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच टीम ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रांची के अरगोड़ा थाना में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय घेराव के दौरान कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पथराव किया जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए।
2: जिस प्रकार से उन्होंने पत्थर बरसाए और उसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं को काफी गंभीर चोटें आई है और इसलिए हम लोगों ने आज जिनको चोट लगी थी संजय चौधरी जी उन्होंने भी एफआईआर किया है। पार्टी की ओर से वरुण साहू जी अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी यहां पर एफआईआर किया है कि उन लोगों के ऊपर जिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई पत्थर चलाए उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए।
1: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण एसआईआर कार्य की समीक्षा करने का बड़ा कदम उठाया है। लापरवाही बरतने पर कई अंचल अधिकारियों और अधिकारियों का वेतन रोकने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एनआईए ने झारखंड के कोडरमा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साल्टोरा ब्लास्ट मामले में हुई इस छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने 1662 डेटोनेटर, 16 लाख रुपए नकद और 5 डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पचम्बा के बिरसा नगर में योजना का लाभ पाकर गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि मिट्टी और खपड़ैल के घरों से मुक्ति मिलने से उनकी जिंदगी आसान हो गई है।
3: पहले हम लोग का घर जो था वो खपड़ा का था, उसमें बारिश जब होती थी तो पूरा पानी टपकता था, उससे रहने में बहुत दिक्कत होता। तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए तो उसमें हम लोग को सुविधा मिला उसका, तो इससे हम लोग घर बनाए, कुछ अपना पैसे मिला के घर बनाए, कोई दिक्कत नहीं होता है किसी तरह रहने में। खुश है हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना पाके।
1: धनबाद के कतरास में CISF ने कोयला चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों ने केशलपुर कोलियारी अस्पताल के पास चल रहे 3 अवैध कोयला खदान मुहानों को बंद कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में कोयले से भरी बोरियां जब्त की गई हैं। धनबाद पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान

0: गिरोह की बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। भूली ओपी क्षेत्र से गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपी स्थानीय कारोबारियों की हत्या की योजना बना रहे थे।
1: छोटू कुरेशी एवं शोएब कुरेशी है, ये लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके पास से दो पिस्टल, दो जिंदा बम एवं तकरीबन चार जिंदा राउंड्स भी मिले हैं। ये लोग बी पॉलिटेक्निक के पास एकत्रित होकर प्लानिंग कर रहे थे कि घटना को अंजाम देना है। उसी के दरमियान पुलिस के द्वारा दबिश देते हुए उनको अरेस्ट कर दिया गया है।
0: रांची रेल मंडल के कितासिल्ली खंड पर प्रस्तावित ब्लॉक रद्द कर दिया गया है। इसके कारण वर्धमान हटिया, खड़गपुर हटिया, आसनसोल रांची और हटिया सांकी रूट की ट्रेनें आज अपने निर्धारित समय और मार्ग पर सामान्य रूप से परिचालित होंगी। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के 13 प्रमुख जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट का भव्य समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में मेजबान रांची जिला ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि खूंटी को दूसरा स्थान मिला। अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए खेलों को पुलिस अनुशासन के लिए बेहद जरूरी बताया। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास पर सीबीआई छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बीजेपी कार्यालय घेरने पहुंची, कांग्रेस के साथ भाजपा की भिड़ंत, 2 घंटे बवाल। प्रभात खबर ने लिखा है, काफिले में गाड़ी बढ़ी, किशोर ने सीएम को दिया धन्यवाद। हिंदुस्तान लिखता है, सिक्किम के श्रमिकों का शव आज रांची लाए जाएंगे। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लॉन बॉल्स में रांची की रूपा रानी का शानदार प्रदर्शन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट पेपर लीक रोकने के लिए आज नए कानून के मसौदे और फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर करेगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष त्वरित अदालत का किया गठन। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के रांची आवास पर छापेमारी, दस्तावेज खंगाले गए। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी, साल्टोरा ब्लास्ट मामले में भारी मात्रा में डेटोनेटर के साथ 2 गिरफ्तार, 16 लाख रुपए और 5 डिजिटल डिवाइस भी जब्त। मानसून की सक्रियता के बीच रांची मौसम केंद्र ने आज रांची समेत राज्य के 13 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। और रांची में संपन्न हुई 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस स्पोर्ट्स मीट 2026, मेजबान रांची जिला बना ओवरऑल चैंपियन, खूंटी दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 24 जुलाई और आज जो हमारे भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध जो फिल्म इंडस्ट्री के हमारे हीरो मनोज कुमार जी का आज जन्मदिन है। उनका वास्तविक नाम हरे कृष्ण गोस्वामी था और हिंदी सिनेमा के भारतीय अभिनेता के साथ साथ वे एक फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीतकार और संपादक भी थे। वो भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे सफल और भारतीय अभिनेताओं में से एक थे। वो राष्ट्रभक्ति से संबंधित फिल्मों में अभिनय के लिए जाने जाते थे, इसी कारण इनका उपनाम भरत कुमार भी

सुन रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के गीत, जिसे 1974 में रिलीज किया गया। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार परमा वल्लिका है, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

0: दोस्तों, के छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

रहा है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम मोरू मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है।

तो मनोज कुमार जी का जन्म एबटाबाद जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत में पड़ता था, जो वर्तमान में खैर पख्तूनहा पाकिस्तान में आता है। मनोज कुमार जी भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और सन 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला और 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मनोज कुमार जब 10 वर्ष के थे तब विभाजन के परिणाम स्वरूप उनके परिवार को जंडियाल से खान से दिल्ली विस्थापित होना पड़ा। मनोज कुमार ने फिल्मों में भाग्य आजमाने, पहले दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए उत्तीर्ण की और जब वे भी युवा थे तब अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल के प्रशंसक हुआ करते थे। अतः शबनम फिल्म में दिलीप कुमार के अभिनय से प्रभावित होकर अपना नाम उन्होंने मनोज कुमार रख लिया था। 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की उम्र में मनोज कुमार जी का देहावसान हुआ, लेकिन उनके अभिनय आज भी लोगों के दिलों में कायम है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: और इसी के साथ संथाली लोकगीत अब यहीं संपन्न।
1: नवाब वजीद अली शाह अख्तर की ये रचना आप सुन रहे थे जनिसार फिल्म से, उस्ताद शफाकत अली खान और शेख घोषाल की आवाजों में, मुजफ्फर अली और उस्ताद शफाकत अली खान की तर्ज थी। इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद, थोड़ा सा इंतजार।

सनम प्रिय, इस फिल्म का गीत आपने सुना अनिरुद्ध भोला और अरिजीत सिंह के सुर में। मिथुन की रचना थी और तर्ज भी थी मिथुन की।

फिल्म दंगल का गीत आपने सुना, जानिता गांधी की आवाज थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं चित्रलोक कार्यक्रम। आज फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। श्रोताओं, उनका असल नाम अरुण कुमार चट्टोपाध्याय था। उत्तम कुमार का जन्म कलकत्ता में हुआ। फिल्मों में आने से पहले वो पोर्ट ट्रस्ट के काम को किया करते थे और 1948 में आई फिल्म दृष्टि दान में सपोर्टिंग रोल से उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म बासु परिवार उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है और अभिनेत्री सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनके साथ उन्होंने कई एक फिल्में की और उनके करियर में कह सकते हैं कि फिर एक नया मोड़ आया। सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ बेहद सफल और लोकप्रिय जोड़ी बांग्ला सिनेमा में मानी जाती है। सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उत्तम कुमार को मिला। वो एक सफल निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक भी थे। 50 से 70 यानी कि 2 दशकों से ज्यादा एक सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित रहे। उनकी हिंदी फिल्म अमानुष खूब पसंद की गई। कुछ एक और हिंदी फिल्मों में भी उत्तम कुमार नजर आए थे और भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा 24 जुलाई 1980 को इस दुनिया फानी से वो विदा हुए। उनकी कुछ एक अगर फिल्मों की बात करें तो सागरिका, एक थी रात, हारानो सूर, पाथे, हेलो देर, इंद्राणी, माया मृग, सप्त दी, बिपाशा, भ्रांति बिलाश, देयानिया, कोकोने मेघ, ये सारी उनकी कुछ अलग अलग फिल्में थीं।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे फिल्म वजीर में। विधु विनोद चोपड़ा का लिखा यह गीत था, शांतनु मोहित्रा की तर्ज थी। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। एक छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।

प्रीतम का सर्वदिकिया ये गीत आपने सुना इरशाद कामिल के बोलते उस्ताद राशिद खान की आवाज थी। फिल्म थी जफी मेट। तुम्हारी सुलू इस फिल्म का गीत है गुरु रंधावा की आवाज। गीत और संगीत भी गुरु रंधावा के।

तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं संपन्न होता है दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की

0: परिवर्तन।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

0: इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।
1: क्रांति

0: करेंगे।
1: क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग,

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। दोस्तों, आज का सबसे पहले सुविचार जान लेते हैं। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कठिनाइयां रास्ता रोकती नहीं, वे हमें आगे बढ़ाती हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज के मौसम का हाल और सराफा बाजार के साथ साथ शहर में हो रही गतिविधियों के बारे में भी हम बताएंगे। मौसम की जानकारी की अगर हम बातचीत करें तो तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस होगा। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है, तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आज भगवद गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में संध्या 6:30 पर। उपायुक्त का जनता दरबार भी आज लगेगा सभागार में 11 बजे से। और सराफा बाजार की अगर हम बातचीत करें तो 22 कैरेट सोना 1,34,900 रुपये और चांदी प्रति किलो 2,32,000 रुपये। दोस्तों, जानकारी के बाद अब हम एक गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम में आपसे आगे बातें और भी करेंगे।

आप ही हमने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। मनोरंजन की दुनिया से आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अब हम जानकारी की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं। आज है राष्ट्रीय आयकर दिवस। आयकर विभाग द्वारा हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के विकास में करदाताओं के योगदान को मान्यता देना, स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना और नागरिकों में कर संबंधी जागरूकता फैलाना है।

यह दिन उन सभी नागरिकों, पेशेवरों और व्यापारियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया भी जाता है जिनका टैक्स राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विषय में खर्च होता है। इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि खबरों के माध्यम से क्या कुछ दुनिया का हाल है और किन खबरों को कौन से अखबार ने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की अगर हम बातचीत करें तो दोस्तों, कई खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में छापा है। बच्ची को सांप ने डसा, 108 एम्बुलेंस से नहीं मिली तो हो गई मौत। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के कुगांव गांव में निःशुल्क 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि 10-12 कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई, जिसमें सांप के डसने से गंभीर हुई 9 वर्षीय शिवानी कुमारी को समय पर इलाज नहीं मिल सका और सदर अस्पताल पहुंचने में देर हो गई और उसकी मौत हो गई। रांची में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुआ घमासान। पीएम का वादा, पेपर लीक पर फास्टैग कोर्ट होंगे, छात्र बोले आज से देश में समर्थन। पेपर नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन गुरुवार को और तेज हो गया। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्टैग कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उधर कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के खिलाफ शुक्रवार को पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्रों से कहा कि आप जहां भी चाहें वहां मिलने को तैयार हैं, चाहे मेरे कार्यालय में आए या जेपी नड्डा के आवास पर। हमने 4 बार संपर्क करने की कोशिश की, मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आए और हमारे साथ बैठे ताकि हम बात कर सकें। धनबाद में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। बागवारा के केसरगढ़ पंचायत के सादियाडीह बस्ती में गुरुवार सुबह नवनिर्मित सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मांडर में युवती के प्रेमी ने स्कूल गेट के बाहर 8वीं के छात्र को 20 बार चाकू से गोदा, हालत गंभीर। रांची के मांडर थाना क्षेत्र में गुरुवार को संजीवर स्कूल मिशन के बाहर दिन दहाड़े 8वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मलती गांव निवासी प्रवीण साहू पर उसी गांव के सुमित उरांव उर्फ डांस ने स्कूल की छुट्टी के बाद करीब 20 बार चाकू से वार किए। गंभीर रूप से घायल छात्र को 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला, जबकि हमला के बाद आरोपी आधा किलोमीटर पैदल चलकर मांडा थाना पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। चासपाल सुधार गृह में के 4 सत्र किशोर हुए बीमार, 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चास के बाल सुधार गृह में 17 बाल बंदी बीमार हो गए। बुधवार शाम अचानक कई बच्चों ने सिर व शरीर में दर्द के साथ बुखार होने की शिकायत की। स्थानीय अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। ऐसे में 15 किशोरों को बुधवार रात ही सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया। झारखंड के आशीष कुमार दास होंगे इंफोसिस के अगले सीईओ। 1 अप्रैल 2027 से संभालेंगे कमान, सलील पारेख की जगह लेंगे। कोडरमा में एनआईए की छापेमारी, 2 विस्फोटक कारोबारी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार तड़के कोडरमा, डोमचांच और नवलसाही में छापेमारी की। इस दौरान विस्फोटक कारोबारी बतडीह निवासी शंकर यादव और डोमचांच के नावाडीह निवासी महेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी में 16.07 लाख रूपये और 22 जमीनों के कागजात जब्त किए। इसके अलावा स्टॉक से 22 बोरी अधिक विस्फोटक मिलने पर मैगजीन हाउस को सील कर दिया। छापेमारी में एनआईए के 12 अधिकारियों के साथ कोडरमा पुलिस के 28 जवान लगाए गए थे। इस जानकारी के बाद अब हम एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में पानी की बचत के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जल हमारे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी का हर बूंद कीमती है, इसे व्यर्थ न बहाएं। वर्षा का पानी इकट्ठा करें और रेन हार्वेस्टिंग से बचत करें। नलों को खुला न छोड़ें, लीकेज तुरंत ठीक करवाएं। पेड़ पौधे लगवाएं ताकि भूजल स्तर बेहतर हो सके। खेतों में भी पानी का इस्तेमाल सोच समझकर और यथोचित करें। नदियों तालाबों को स्वच्छ करना हमारी जिम्मेवारी है, इसे समझें। और आज पानी बचाएं, तभी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगा। यानी संकल्प लें कि जल है तो कल है। और दोस्तों, अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और अखबार में छपी खबरों के ऊपर ध्यान देते हैं और जानते हैं सबसे पहले क्या कुछ कहता है हजारीबाग जागरण। गोदाम में बीज वितरण में देरी से नाराजगी। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कृषि विभाग की लापरवाही से इन योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक नहीं हो पा रहा है। हजारीबाग बड़कागांव रोड स्थित शंकरपुर आत्मा कार्यालय परिसर के गोदाम में मूंग, मड़ुआ, मक्का और मूंगफली समेत कई खरीफ फसलों के बीज अब भी बड़ी मात्रा में पड़े हुए हैं, जबकि खरीफ फसलों की बुआई का समय लगभग समाप्त होने को है। अंचल कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला। उपायुक्त कार्यालय हजारीबाग की जिला राजस्व शाखा ने जिले के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरित किया है। अपर समाहर्ता द्वारा जारी आदेश के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुल 26 कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक अंचल से दूसरे अंचल तक पदस्थापित किया गया है। जिला राजस्व शाखा की ओर से जारी पत्रांक 18-15 दिनांक 21 जुलाई 2026 के आदेश में बताया गया कि यह स्थानांतरण 20 जुलाई 2026 को आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किया गया है। व्यस्त बरही चौक पर बने गहरे गड्ढों से राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी तथा दुर्घटना की आशंका को देखते हुए गुरुवार को एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में सड़क के बड़े गड्ढों को स्टोन डस्ट से भरवाया गया। बिरहोर टोला में अगस्त के पहले शनिवार को लगेगा विशेष शिविर। उपायुक्त हेमंत सती ने गुरुवार को कटकमसांडी प्रखंड के बीरहोर टोला कंसार का व्यापक निरीक्षण कर आदिम जनजाति बीरहोर समुदाय की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने नव प्राथमिक विद्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बीरहोर टोला में चापाकलों की स्थिति, कच्चे मकानों में वर्षा के दौरान हो रहे जल रिसाव तथा विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। सिक्किम सुरंग हादसे में बरही के मजदूर की मौत। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग क्षेत्र में एनएचपीसी के निर्माणाधीन त्रिस्टा स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए दर्दनाक हादसे में हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड अंतर्गत कोल्हू आकला पंचायत के तिलैया बस्ती निवासी 45 वर्षीय जागेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। यह स्वर्गीय हेमंत ठाकुर के पुत्र थे और परियोजना में पोकलेन मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। खेत की जुताई के दौरान किसान पर पलटा ट्रैक्टर, मौत। बरही थाना अंतर्गत कोरियाडी गांव स्थित बगहा आहार के पास गुरुवार को खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कोरियाडी निवासी सचिदानंद प्रसाद के 37 वर्षीय पुत्र देवलाल कुमार के रूप में हुई। निगम ने वसूला 5,000 रूपये का जुर्माना। नगर निगम ने सार्वजनिक चापाकलों पर अवैध रूप से मोटर और पाइप लगाकर जल दोहन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता के निर्देश पर गुरुवार को शहर के दिवांगना और मटवारी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 3 सार्वजनिक चापाकलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। रेलवे साइडिंग पर कोयला लदा ट्रेलर जब्त। चरही थाना क्षेत्र के रेलवे साइडिंग मार्ग पर अवैध कोयला लदा 22 चक्का ट्रेलर पुलिस और सीसीएल सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। जोराकाट जंगल की ओर से अवैध कोयला लेकर निकल रहा ट्रेलर संख्या JH02BL6483 गुरुवार अहले सुबह करीब 4 बजे
से 5 बजे के बीच कीचड़ में फंस गया, जिसके बाद मामला का खुलासा हो। सूचना मिलते ही चरही पुलिस और सीसीएल सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को इस गीत में।

दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते और डालते हैं नजर प्रभात खबर पर। ख्यांगते के घर पर सीआईडी का छापा, कई दस्तावेज हुए जब्त। ये कहना प्रभात खबर का। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास पर गुरुवार को छापा मारा। सीआईडी की टीम पुलिस बल के साथ दोपहर 2 बजे लगभग काके रोड स्थित ख्यांगते के आवास पर पहुंची। मौके पर घर में आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। जांच दल ने आयोग से जुड़े दस्तावेज की गहन जांच करते हुए महत्वपूर्ण कागजात और अन्य रिकॉर्ड खंगाले। मौके पर कई दस्तावेज को जब्त करने की खबर है। हालांकि छापेमारी में क्या बरामद हुआ इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस मामले में अब तक जेपीएससी मुख्यालय एजेंसी के दफ्तर और इसके कर्मियों और जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक के आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। छापेमारी के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे लोकभवन ने अगले ही दिन स्वीकार कर लिया था। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सीआईडी ने ख्यांगते के आवास पर छापा मारा था। जेपीएससी में हुई गड़बड़ियों के मामले में सीआईडी ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की और प्रार्थियों को फिलहाल अंतिम राहत नहीं, जेपीएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता के मामले में जेपीएससी ने जवाब मांगा। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। ये याचिका प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी को रद्द करने और मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल की गई है। झारखंड में सरकारी नौकरी में योगदान से पहले लेनी होगी शपथ, न दहेज लेंगे न नशा करेंगे। झारखंड सरकार के अधीन नियुक्त होने वाले सभी नए सरकारी सेवकों को नए नियम बनाया गया है। इनके लिए उनको कार्यभार ग्रहण करने से पहले निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा। उन्हें दहेज प्रथा का विरोध करने, नशाखोरी से दूर रहने और सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने की संकल्प भी लेना होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। संकल्प के अनुसार सभी नव नियुक्त कर्मी पहले सामूहिक नियुक्त पत्र वितरण समारोह में शपथ लेंगे। इसके बाद संबंधित कार्यालय में योगदान के समय अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र का वाचन करेंगे। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं।

दोस्तों, खबरों में आगे भी बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया का हाल। हिंदुस्तान अखबार क्या कुछ कहता है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते के आवास पर छापे, ये कहना है हिंदुस्तान अखबार का। जेपीएससी के 14वीं समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता मामले में गुरुवार को सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवास और आयोग स्थित उनके कार्यालय कक्ष पर छापेमारी की। वहीं जेपीएससी कार्यालय व परीक्षा संचालक एजेंसी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर दबिश दी। लातेहार में पीएलएफआई के दो उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने गुरुवार को रंगदारी वसूलने आ रहे दो पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से कई हथियार भी जब्त किया। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान लोहरदगा निवासी संजय सिंह उर्फ भीम सिंह और शहजाद अंसारी के रूप में की गई। कोडरमा में एनआईए के छापे, डेटोनेटर 16 लाख के जब्त। विस्फोटकों की तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोडरमा में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की दो टीमों द्वारा एक ही समय में अलग अलग छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 1600 से ज्यादा डेटोनेटर, 16 लाख रुपए नगद, अलग अलग भूखंड के 22 दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण कागजात भी जब्त किए हैं।

0: एकल परिवार में रहने से अवसाद बढ़ रहा। कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि एकल परिवार में रहने वाले लोगों, खासकर युवाओं में डिप्रेशन यानी अवसाद बढ़ रहा है, आज की पीढ़ी बेचैन है। शीर्ष अदालत ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस एमएम सुंदरेश और बीपी वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पति की हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी। और दोस्तों, आज 24 जुलाई है। आज भारत और विश्व में किन किन घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में भी हम आज बातें करेंगे। आज के दिन 1830 में चिली में दास प्रथा समाप्त हुई। आज के दिन 1834 में पुर्तगाल के में उदारवादी युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका में पहली अंतर्देशीय रेल सेवा आज के दिन शुरू हुई। और 1911 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म भी आज के दिन हुआ। सेंट्रल शिकागो में एक स्टीमर स्टिलेंट की वजह से 844 लोगों की जाने चली गई थी। और आज के दिन एरिस्टेंड ब्रांड के उत्तराधिकारी बनने के बाद फ्रांसीसी के प्रधानमंत्री रेमन पोकरे ने पद छोड़ दिया। और दोस्तों, आज के दिन 1937 को प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार जी का जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम श्री कृष्ण गिरी गोस्वामी था और इन्हें भरत कुमार के नाम से भी जानते थे। यह एक अभिनेता के साथ साथ मनोज कुमार फिल्म निर्देशक, फिल्म के निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक और एक सफल राजनीतिक भी रहे। 1957 से लेकर 1999 तक इनका सक्रिय वर्ष रहा और ये भारतीय जनता पार्टी में भी इस दल में भी रहे। और इनके जीवन साथी थे शशि गोस्वामी, इनके दो बच्चे कुणाल गोस्वामी और इनके पिता का नाम एचएल गोस्वामी, माता का नाम कृष्णा कुमारी गोस्वामी था। और इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 1992 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में मिला। आइए इन्हीं की अभिनीत फिल्म के गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म मेरे सनम में, जिसमें मनोज कुमार के साथ साथ आशा पारेख और सिमी ग्रेवाल ने भी काम किया था।
1: तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो।
0: इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला।

दोस्तों, आज के दिन यानी 24 जुलाई 1980 को निधन हुआ उत्तम कुमार जी का, जिनका असली नाम अरुण कुमार चट्टोपाध्याय था। इन्हें बंगाली सिनेमा का महानायक भी कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1926 को कोलकाता में। मुख्य रूप से इन्होंने बंगाली और कुछ हिंदी फिल्में की और प्रसिद्ध फिल्में इनकी थी नायक, अमानुष और आनंद आश्रम। आइए सुनते हैं छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: खबरों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई और भारत और विश्व के स्तर पर, ये जानते हैं। 1945 में आज के दिन बेंगलुरु स्थित विप्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ। आज के दिन 1999 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल शुरुआत हुआ। 2002 में यूरोपियन यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में 3.20 करोड़ यूरो अतिरिक्त देने का निर्णय लिया। आज के दिन 2004 में इटली ने भारतीय सिनेमा के लिए 7 वीर कॉर सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया। 2005 में आज के दिन कोरिया क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा से मुक्त करने के लिए उत्तर और कोरिया के बीच आम सहमति बनी। 2006 में प्योर्टो रिको को सुंदरी जुलेखा रिवेरा मेडोजा गिस यूनिवर्स हुआ। और आज के दिन 2008 में फ्रांस के ट्राइकेस्टीन परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 100 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। और आज के दिन 2012 में उपराष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा राष्ट्रपति जॉन अट्टा मिल्स के निधन के बाद घाना के राष्ट्रपति बने। 2014 में यूक्रेन के प्रधानमंत्री आर्सेनी यात्सेन्यूक ने ऊर्जा और सैन्य धन को चुनौती देने के लिए संसद में विघटन पर अपना इस्तीफा दिया। और आज के दिन 2017 में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व राष्ट्रपति उडुपी रामचंद्र राव का निधन हुआ था। साथ ही आज ही के दिन 2020 में मशहूर भारतीय नृत्यांगना एवं संगीतकार अमला शंकर का भी निधन हुआ। इस जानकारी के बाद एक और गीत हम सभी मिलकर सुनते हैं।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: 10, 9, 8, 7

0: को फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। अभी से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: सिर्फ

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज गूंज रही है इस कार्यक्रम की शुरुआत में। डॉक्टर राही मासूम रजा का कलाम है। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 11 बज चुके हैं और इस भीगे मौसम में विविध भारती कुछ गजलों की फुहारें छोड़ रही है आपके नाम।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
0: विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम चल रहा है और अब गुलजार के बोल आशा भोसले की आवाज एल्बम का नाम दिल पड़ोसी है।

0: निधा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग

जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरंडों पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता।

0: अदान समी बारिश की बूंदों का गाना गा रहे थे। विविध भारती से आप सुन रही हैं रंग तरंग, एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा तेरी याद आई।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
6: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए
0: छाया कांगुली की सोंधी आवाज, जमीर काजमी के बोल।

11:47 हो चुके हैं। विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। के की

सुरेश वाडकर की आवाज में ये सनी फिल्म की रचना थी और रंग तरंग प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश थी। रंग तरंग कार्यक्रम तो यहां खत्म हो रहा है, लेकिन विविध भारती पर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनते रहिए विविध भारती।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

0: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्टर कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
1: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यादों की

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेलुलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है।

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

0: नहीं अपना आएंगे।
1: अरे चल सन्यासी।
2: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम में थे मनोज कुमार की कहानी।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक ही भारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती का फेसबुक पेज ढूंढने के लिए लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और आप विविध भारती के टेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। आज का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नीला। और तुम्हारा? लाल। तुम्हें समंदर पसंद है या वादियां? समंदर में वादियां। ऐसा होता तो नहीं, सोचो कभी ऐसा हो तो। अच्छा, तुम्हें भोर पसंद है या शाम? दोनों। तुम्हें आसमां पसंद है या जमी? दोनों। अरे घोड़ा चतुर मत करो, किसी एक पर रहो। अच्छा तो मैं एक चुनौती देता हूं, देखते हैं तुम कितनी देर चुप रह सकती हो। ये बात है तो लो, अब मैं तुमसे रूठ गई, जाओ। छोटी सी बातचीत की एक इबारत आज के इस कार्यक्रम का मसौदा, और इसमें वो शब्द शामिल हैं जिन पर केंद्रित होगा आज का कार्यक्रम, यानी उन शब्दों से गाने चुनकर आज हम आपको सुनवाएंगे। छोटी सी क्यूट सी बातचीत, और इस क्यूट सी बातचीत में कुछ बड़े प्यारे से शब्द छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गाने के साथ, और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स पड़ेंगे जो दिल को छू लेने वाले भी हैं और गुदगुदाने वाले भी। तो आप जिस आवाज की परिकल्पना कर रहे थे उसकी बजाय दूसरी आवाज के साथ नीले रंग का गाना।

0: सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मजा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है, और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखती है कि नीले से याद आया राजेश खन्ना, फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का सख्त रुख। फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की तैयारी के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने की दोषियों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान की वकालत। रांची के सूचना भवन से शुरू होगा झारखंड फिल्म संस्थान सत्यजीत रे संस्थान के कुलपति ने लिया तैयारियों का जायजा। शुरू होगा शॉर्ट टर्म कोर्सेज। रांची के जरूरतमंद मरीज के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए स्वीकृत।

0: सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर अब तक बांटे गए 86 लाख रुपए। श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में, एआई सुरक्षा और महिलाओं के लिए विशेष कैंप तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल करेंगे तैयारियों की समीक्षा और हजारीबाग के केरेडारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल और दूसरा गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करनी थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: गुड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि विपक्ष के सहयोग से संसद में पेपर लीक के खिलाफ निर्भया मामले जैसा सख्त कानून बनाया जा सकता है।
2: चर्चा होने दे, पेपर लीक के मामले में भी हम कड़ी सजा का प्रावधान कर सकते हैं। उनको हम आजीवन कारावास की बात कर सकते हैं, उनके सामान को कुर्की जब्ती, उनके सारे संपत्ति को कुर्की जब्ती की बात कर सकते हैं, उनको फांसी की सजा तक का जो है हम प्रावधान कर सकते हैं।
0: झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की शुरुआत रांची के सूचना भवन से की जाएगी। इस सिलसिले में कोलकाता के सत्यजीत रे संस्थान के कुलपति समीरन दत्ता ने सूचना भवन का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस पहल से स्थानीय प्रतिभाओं को फिल्म निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण के वैश्विक अवसर मिलेंगे। रांची के टाटी सिल्वे निवासी गंभीर रूप से बीमार प्रणय कुमार रॉय के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 3 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर इस वित्तीय वर्ष में अब तक जरूरतमंदों के इलाज के लिए कुल 86 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। 50 लाख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया फुट ओवर ब्रिज और सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इधर महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि बुजुर्ग और अकेली महिलाओं के लिए अलग कैंप, माताओं के लिए फीडिंग सेंटर तथा महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर चिकित्सा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: जो महिलाएं बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट हैं, फीडिंग मदर्स हैं या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए उन्हें आम लोगों के साथ ठहरने की जरूरत नहीं है, उन्हें अलग से सुविधा दी जाएगी और इसके लिए हर पारी में 3 महिलाएं रहेंगी जो उनकी मदद करेंगी।
0: रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक सांस्कृतिक और जन जागरूकता का अनूठा समन्वय दिखा। कलाकारों ने पारंपरिक नागपुरी नृत्य के साथ नशा मुक्ति और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावी प्रस्तुतियां दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा ने कोल्हान में संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी 1 से 16 अगस्त तक सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
4: बूथ कमेटी बने हुए, इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके बूथ कमेटी को सशक्त करना, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन को देने, क्योंकि जिस प्रकार 7 वर्ष में और इस सरकार से मुक्ति चाहते, तो ऐसे समय में जहां जनता हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो हमें अपने संगठन को सशक्त करना।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली।
5: जितने भी पेशेंट्स और अटेंडेंट्स हैं, बहुत ही यहाँ के व्यवस्था और सुविधा से काफी खुश है। यहाँ की साफ सफाई जो है बेहतर है, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की उपलब्धता, यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, ये सभी जो है प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दे, और लगातार जिला प्रशासन कोशिश कर रही है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कि यहाँ सुविधाएं और बेहतर करें।
0: हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जमशेदपुर के डिमना डैम से बेहद दुखद खबर है। MGM अस्पताल के 2 इंटर्न डॉक्टर समीर और सक्षम की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस और गोताखोर ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाल लिए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के 13 प्रमुख जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री ने सख्त रुख, फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की तैयारी के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने की दोषियों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान की वकालत। रांची के सूचना भवन से शुरू होगा झारखंड फिल्म संस्थान सत्यजीत रे संस्थान के कुलपति ने लिया तैयारियों का जायजा। शुरू होंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज। रांची के जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रूपये स्वीकृत। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर अब तक बांटे गए 86 लाख रुपए। श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में, AI सुरक्षा और महिलाओं के लिए विशेष कैंप तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल करेंगे तैयारियों की समीक्षा। और हजारीबाग के केरेडारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल और दूसरा गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

क्या प्यारा गाना और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना यह है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र का है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। माँ नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नज़ारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती है कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुले, आरे वारे, जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूं तो

ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूँ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है वादियों में खो जाएं हम तुम। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत जरूर सुनवाइएगा। तो भाई इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा तो उत्तम कुमार जी के गाने जरूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि ये आरती मुखर्जी की आवाज है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की ये फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूं, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही हैं कि जिंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं ये बचकानी सिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन आना सागर झील है और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मज़ा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इसी भारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना। विविध भारती, ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी के बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते हैं, एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहां खेती बाड़ी होती है, यहां नदियां तो हैं, पहाड़ और वादियां दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियां भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहां बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधल का उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां के नीचे।

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए, तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहां जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: विविध भारती से बोल रही हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। माधाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के

0: वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना ना हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
4: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में

0: हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @eairnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people,

0: and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले तीन दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड़ में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमें।

अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंडीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।

0: किया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। श्री मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की घटना के बाद से ढाई महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया और वे जेल में बंद हैं।
1: गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: नीट पेपर लीक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने की बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को वाराणसी से दीपोत्सव, कलश पूजन और समरसता संगोष्ठी के साथ होगी। इस दौरान गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर फरार अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना झील में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टरों के डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुलिसकर्मी और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोबाइल पानी में गिर जाने के बाद उसे निकालने के क्रम में यह हादसा हुआ। दोनों डॉक्टरों के शवों को झील से बाहर निकाल लिया गया है।
2: इतना स्लिपरी है ना कि यहाँ कोई खड़ा होगा तो स्लिपरी करके तू नीचे जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। तो वो ट्रेस करते करते नीचे गए। पहले एक मिला तो फिर हम उसको ले आए। पहले हम सोचे कि दोनों को एक साथ ले आएंगे, हम दूसरा मिल नहीं रहा, पहले उसको ले आते, फिर दोबारा 10 फीट के गैप में फिर नीचे गए जा रहे थे, फिर वो दूसरा भी मिला।
0: मस्कट में चल रही यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला अंडर 18 टीम ने कजाकिस्तान को 10-0 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। झारखंड की संदीपा कुमारी ने हैट्रिक सहित 3 गोल किए और लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। भारतीय टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, नीलम टुपनो, श्रुति कुमारी और खिल्ली कुमारी शामिल हैं। लगातार 4 जीत के साथ भारतीय टीम अब नॉकआउट चरण और FIH यूथ हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे। 50 लाख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया फुटओवर ब्रिज और सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 29 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मन पसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्नी नन्नी सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्नी खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्नी खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली से मैं बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं क्या करती हैं।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी की मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना, होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा मिली कुछ बातें कुछ गीत से।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
0: ये बड़ी अच्छी बात,
1: हिचक खुलती गई थी।
0: सृष्टि बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
1: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
0: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है, अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कोई शौक आपके?
1: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं, मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं।
0: ये बिल्कुल सही बात है।
1: अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक
0: है। अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी जी जी जी जी।
0: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
1: लिख नहीं सकते आप।
0: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
1: जी जी जी।
0: सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
1: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
0: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।
2: सपनों

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी। दीदी,
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: जिला सागर है, मध्य प्रदेश, ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में, यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है दीदी। दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन
0: जी,
1: 5वीं तक हमने यही सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी?
1: जी दीदी।
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है,
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: जी दीदी।
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी।

0: ढूंढू मैं कहां, हो माँ के बिना फूला है जहां, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ।
1: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है।
0: जी दीदी,
1: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
0: मूवी का नाम है रंग
1: जी,
0: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
0: जी
1: इसमें क्या मेरी खता है।
0: जी
1: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर गुलाबी नगरी, इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं बताइए।
1: जी ऐसा है कि ये जो नगरी है यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या बताइए।
1: देखिए ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: देखिए मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, ये दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव।
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा गोयल बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे?
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं।
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम हम तो बस घर का काम करते हैं।
0: अच्छा,
1: हम ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना।
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती। अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फिर मिलन के गीत रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युति कनागर बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात कर रही हैं, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युथिका नागर।
0: युथिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना।
0: हाँ जी, जूही का फूल बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुनके उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए, मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरे मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है। तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ।
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ में काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर। ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा। रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाने कैसे गा लेते हो, कहीं सीखा है? मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है।
0: तो बताइए आपकी पसंद कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है,
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: जलंधर सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में
1: मैम,
0: बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह गुजरता है?
1: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ घर
0: ऐसे कौन से
1: जाकर।
0: काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना।
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: हाँ जी मैम।
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम। मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम्हें चाहे, मेरा मन। यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। मैम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के।
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े?

0: बनाती हैं?
1: सूजी के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भून कर
0: सूजी के टुकड़े बनाती हैं।
1: जी जी मैम, और मैम आटे की भी बना लेते हैं मिठाई,
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं।
1: जी आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बनी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं उनमें कोई भी मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आप गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा, बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
0: सानिया जी आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का, आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही है।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए।
1: अमरावती।
0: अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ।
0: आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती, वो स्टोरी और कोई कथा व्यथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती
1: वो,
0: हैं। और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा,
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: इसीलिए
0: है?
1: हम दोनों ही हैं।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ, हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ, और वो नहीं, वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो
1: जी
0: आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी
1: जी
0: बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल
1: जी
0: सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी, अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप। रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी,
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये
1: बिल्कुल,
0: अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-2462। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और भाजपा के कई अन्य नेताओं तथा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। यह बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुकरू कोल परियोजना क्षेत्र में हुई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार

0: की टक्कर में घायल तीनों युवकों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप

सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा। जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, आप सुन रही है ना? आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4। बस? और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर

तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवर टाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

0: सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी।
1: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोद। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोद उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोद का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोद का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
3: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
3: दो मेंढकों की यात्रा।
5: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
6: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
5: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
6: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
7: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
6: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
5: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
6: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
7: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
6: भाई वाह।
7: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
6: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
7: अच्छा,
6: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
7: वाह,
6: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
7: हाँ, ये तो है।
5: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
6: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
7: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
6: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
7: हैं? वो कैसे?
6: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहाँ हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
7: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
6: वो कैसे?
7: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
6: भाई वाह!
8: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
7: बड़ा ऊंचा पहाड़ है।
6: पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
7: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
6: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
7: हाँ,
6: चलो पहुँचे तो सही।
7: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
6: हैं?
7: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
6: मैं क्योटो देखूंगा
7: और मैं ओसाका।
6: क्यों नहीं, चलो
7: चलो।
8: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
6: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
7: चलो
6: संभल कर।
7: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
6: बचे।
8: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
6: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
7: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
6: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
7: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
6: हाँ चलो।
8: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
0: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में

0: दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
1: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी इस पुड़िया में क्या है?
0: नमक, लाहौरी नमक।
1: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
0: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
1: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
0: है?
1: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
0: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
1: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
0: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
1: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
0: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।

0: अरे कहाँ जा रही है बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ
3: इधर आइए
0: जी।
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन को किसी से कहना मत।

0: वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। कुछ ही पल में संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति तथा चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण और तस्करी पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक देशभर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को वाराणसी से दीपोत्सव, कलश पूजा और समरसता संगोष्ठी के साथ होगी। लोहरदगा जिले के कोड़ थाना क्षेत्र के कोलसिमरी पंचायत के नंतिलो झखरा टोली में धान रोपाई के लिए सिंचाई करने को लेकर बिजली तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। और बोकारो जिले में स्थित तेनुघाट डैम के 3 रेडियल गेट और 1 अंडर सुलिस गेट खोल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डैम में पानी रखने की क्षमता 852 फीट है, जबकि वर्तमान में डैम में 850.05 फीट पानी है। खतरे के निशान के करीब होने के कारण एहतियातन तीनों गेट खोले गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:02 हैं। पेशे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेश फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने, बोल आनंद बख्शी के, संगीत नदीम श्रवण का।

0: किंग अंकल, आपने सुना इस फिल्म का गीत साधना सरगम और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा इंदिवर ने, संगीत दिया राजेश रोशन ने।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए

0: हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: किशन कन्हैया, आप सुन रहे इस फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने गाया है इस गीत को। बोल इंदिवर के संगीत, राजेश रोशन का।

कोई मिल गया, आपने सुना इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, बोल इब्राहिम अश्क के, संगीत राजेश रोशन का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और हेमा सरदेसाई ने, बोल देव कोहली के हैं और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 5:30 में प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सभी भाई बहन के जोहार प्रणाम और राम राम। साथ साथ सभी भाई बहन के अपनी खास कार्यक्रम खेती बारी में स्वागत हैं, जोहार हैं। और जैसा कि हम जाने कि देखा कि अभी समय है पूरा खेती बारी के, खरीफ के, और साथ साथ हम इन धान के रोपा भी बहुत जगह लोग कर रहे हैं। और देखा जेकर पास पानी के पहले साधन हले वो तो अपन धान रोपा के काम जो है चालू कर दिले है, लेकिन जे किसान के पास पानी के साधन नहीं हले, इधर देख लिए हमें पानी भी जितना होना चाहिए मानसून में उतना नहीं होले है, तो उनकर बीहन जो है तैयार अभी हो रहा। आशा करिए कि इस महीना के अंतिम तक या अगस्त के पहला सप्ताह में वो अपन भी रोपाई कर देते। और देखा जब हम देखिए कि पानी मानसून थोड़ा जब कमजोर रहा है तो उस तरह उस समय हम देखिए कि हम का कर सके। तो एकर में देखा धान के खेती में हम बात करबे कि देखा हम जैसा कि है हम जाने हिये कि हम छीटा विधि से हम खेती बाड़ी कर रहिए और श्री विधि से भी खेती बाड़ी कर रहिए। तो दो तरह के विधि हम इनके पास है, जब पानी अगर कम हुआ है तो हम इन श्री विधि से भी खेती कर रही है। और देखा कि अब किसान जो है बहुत सा किसान जो है जहाँ जे खेत में पानी कम जमा है तो वहाँ श्री विधि अपना ले, और जे खेत में पानी हम इनके रहा है वकर में हम इन छीटा विधि के या रोपाई विधि के हम इन खेती बाड़ी कर रही है। साथ देखा कि खरीफ फसल में अगर हम इन बात करबे जे कि बुआई जेकर जून और जुलाई में हुआ है बरसात शुरुआत होते ही ओकर में, तो एकर में देखा अगर हम इन अनाज में बात करबे तो एकर में चावल जैसा कि धान होले, मक्का होले, ज्वार होले, बाजरा होले, मड़ुआ होले, इस सब के हम इन खेती कर रही है इस समय। अगर हम इन दलहन के बात करबे तो मूंग, उड़द, तुअर, अगर हम इन अरहर भी बो रही है, कुलथी के दार भी हम इन कर रही है। तिलहन में अगर हम इन बात करबे तो मूंगफली, सोयाबीन, तिल के हम इन खेती कर रही है। और अगर नकदी या रेशेदार फसल में हम इन बात करबे तो जूट और गन्ना के और साथ ही साथ सन के भी बहुत सा लोग खेती बाड़ी करा है। तो ये सब हम इन खेती बाड़ी कर रही है। और देखा कि हम इन हमेशा बात बोल रही है कि जब हम इन कोई भी खेती बाड़ी कर रही है तो ओकर में देखा कि हम इनके माटी के जांच बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए, क्योंकि माटी के जांच करे के बाद ही हम इनके मालूम चला है कि हम इनके माटी के का सेहत है, कौन सा चीज़ की कमी है या नहीं है। तो देखा अगर खरीफ के फसल में जे किसान भाई बहन अगर खरीफ फसल कर ले है और ओकर में देखा कोई चीज अगर कमी बेसी हो ले तो हम इनके एकर में देखा अगर बात हम इन करबे नाइट्रोजन के अगर कमी हुआ है अगर पौधा में तो ओकर में देखा नाइट्रोजन के कमी से का हुआ है, ओकर में जे पत्ता है वह पीला पड़ जा है, पौधा के जो बढ़वार है वो रुक जा है। एक साथ ही अगर फास्फोरस की कमी हुआ है खरीफ फसल में तो एक से जड़ कमजोर हो जाए है, और एक में देखा पत्ती जो है बैगनी या लाल रंग के एकर में हो जाए है। अगर फास्फोरस की कमी हुआ है खरीफ फसल में तो पत्ती के जो किनारा और कोना जो है भूरा होकर झुलस जाए है। जिंक की अगर कमी एकर में हुआ है तो पौधा में जो है कथित हब्बा नजर आवा है और पत्ती भी अगर छोटा आकार के एकर से हो जाए है। अब देखा ये तो हम इनके बात हो गए कि कमी हो जाए है ऐसे पोषक तत्व के, तो किस तरह हम इनके पहचान हम इन कर सकेंगे। अगर हम इन समाधान के बात करबे तो जैसा कि हम बतेबे कर लिए कि समाधान में है सबसे पहले तो माटी के जांच एकर में होवे के चाहिए, क्योंकि माटी के जांच अगर हम इन पहले करा लीजिए तो हम इनके कमी मालूम चल जाए है कि कौन सा चीज़ की कमी है, पोटासियम की कमी है कि फास्फोरस के है कि बोरन के है कि जिंक के है कि नाइट्रोजन के है, तो हम इनके कमी के वो मालूम चल जाए। अब माटी जांच कराए के बाद हम इन वो कमी के दूर कर देंगे जेकर से हम इनके जो पौधा है अगर बढ़वार बढ़िया हुआ है और रंग रूप भी बढ़िया हुआ है। अगर हम इन एक समाधान के एक बात भी करबे तो एक में देखा कि माटी के जाँच तो हम इन पहले कराए लेवे चाहिए, और न तो फिर उर्वरक के प्रयोग जैसे यूरिया के जो प्रयोग है कतार में अगर हम इन कराइए तो एकर में बहुत सा कमी हमें इनके जो है पोषक तत्व जो है पौधा के कर मिले है। फास्फोरस के खातिर अगर फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस देवे के खातिर सुपर फास्फेट के प्रयोग हम इन कराइए। बहुत सारे देखा कि ई कमी के दूर करे के खातिर बहुत सारे लोग जो है जैविक खाद के भी प्रयोग करा है, केचुआ खाद के भी प्रयोग करा है, जो कि खेत के लिए और फसल के लिए बढ़िया रहा है और बहुत तरह के पोषक तत्व एकर से भी हम इनके पौधा के मिला है। अगर सूक्ष्म जीव के कमी हुआ है तो जिंक या फेरस सल्फेट 0.5% के घोल बना के पत्तियां में छिड़काव अगर कर रही है तो हम इनके ये सब तरह के जे कमी बतलिए वो एक में दूर हो जाए। और ये कमी के जब हम इन दूर कर लिए तो हम इनके देखा पौधा जो है स्वस्थ हो जाए और बढ़िया एक में बढ़वार भी हुआ है और बाद में देखा कि एक अच्छा एक उत्पादन भी हम इनके देवे है। तो भाई कार्यक्रम में तो हम इन बनल ही अभी समय हो चुके है जरूरी संदेश के और एगो प्यारा सा गीत के, तो सुनिए जरूरी संदेश और बाद प्यारा सा गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: और देखा हमें जरूरी संदेश भी सुन लिया और ओकर पहले हमें सुन लिया एगो प्यारा सा गीत। और आशा कर रही है जरूरी संदेश के साथ प्यारा सा गीत किसान भाई बहन के बढ़िया लगले होते। अब देखा कि बात अभी करबे हमें कि वर्षा के जो जल संचयन है ओकर का महत्व है और कैसे ये करल जा सका है। तो देखा कि हमें हमेशा बोलते रहिए कि जितना कम हो हम इनके पानी के हम इन उपयोग हम इन करिए और जितना पानी के हम इन बचत करिए तो बढ़िया रहा है। और इस समय देखा बरसात के जिस समय है अभी एकर में जे पानी जे बह जा है ओकरा हम इन किस तरह बचा के रखिए, किस तरह जमीन के अंदर हम इन रखिए, तो ओकरा हम इन इस तरह के हम इन बचत करिए और इस तरह के हम इन संचयन करिए। तो एक खातिर देखे अभी हम इन गाँव घर में जब हम इन जाइए तो देखिए कि घर के पानी हो या और पानी हो तो वो रोड में देखा बहते रहा है। तो एक खातिर अपन घर के सामने जो है छोटा सा अगर पनसोखा भी लोग अपन बना ले है अपन घरे के पानी जो है ओकर में अगर गिरा है अब वर्षा जल के पानी तो जैबे करते ओकर में, तो इस तरह का अगर व्यवस्था अगर सभी लोग मिलजुल के अगर करते तो एक अच्छा खासा हम इन पानी के संचयन जो है जल संचयन जो है कर सके ही एकर में। एकर से ये होते कि हम इनके जो आ जाए के रास्ता भी है वो भी गंदा न होते और पानी के हम इन संचयन भी एकर में कर सकिए और साफ सफाई भी चारों तरफ रहते। एकर साथे देखा सरकार के तरफ से हो या कोई योजना के मदद से हो लोग देखा डोभा का निर्माण होले, चाहे कूप के निर्माण होले, चाहे तालाब के निर्माण होले, ये सब चीज भी कर रहा है। तो एकर से भी देखा जल संचयन एकर में हुआ है। और देखा अगर हम इन जल संचयन अगर बड़ा मात्रा में अगर हम इन कर लीजिए तो ओकर देखा एक रोजगार भी हम इनके ओकर से मिल सके है। ओकर में हम इन मछली पालन कर सकिए, बत्तख पालन कर सकिए और अपन खेती बाड़ी में जो भी हम इनके पानी के जरूरत है, जल की जरूरत है, वो भी ओकर से हम इन ले करके अपन खेती बाड़ी भी बढ़िया ढंग से कर सकिए। तो देखा सभी लोग जब मिलजुल के काम करते हैं सोखा बनाते कि छत के पानी हो या रास्ता के पानी हो या घर के पानी हो एक गड्ढा में अगर जा करके जमा होते जेकर के भूमिगत जल जब वो चला जाते नीचे तो एक तरह से देखा कि हम इनके जो जल है भूमिगत जल है ओकर जो स्तर है वो ऊपर उठते। तो वर्षा जो जल संचयन है इस सभी लोग के करे के खातिर होवे के चाहिए। और देखा अब हम इन आगे बढ़ेंगे जानकारी के तरफ और आज हम इन जानकारी ला लिए ऑर्गेनिक खेती के फायदे के बारे में और जानकारी दे रहे थे धनंजय कुमार। तो सुनिए धनंजय कुमार की जुबानी ऑर्गेनिक खेती के का है फायदे एक बारे में।
1: श्रोताओं आज हमारी बातचीत हो रही है धनंजय कुमार से जो कि एक ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आइए बातचीत करते हैं धनंजय कुमार से। धनंजय जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: धनंजय जी जैसा कि हम जानते हैं कि खेती बाड़ी सभी किसान करते हैं, फिर भी जैसे और सब किसान जो खेती बाड़ी करते हैं और आप जो खेती बाड़ी करते हैं यानी ऑर्गेनिक खेती, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती होता क्या है।
2: ऑर्गेनिक खेती एक्चुअल में जैविक खेती होता है सर
1: जी।
2: हम मानते हैं कि जैसे जंगल का अपना कानून होता है
1: जी,
2: जंगल में तो कोई यूरिया डीएपी नहीं डालता, नहीं किसी कीटनाशक का स्प्रे करता है, लेकिन आप जंगल में जाइए जब जाइए आपको हरा भरा मिलेगा और एक अजीब सी शांति मिलेगी। और मुझे लगता है कि सुबह सुबह लोग जंगल इसलिए भी जाता है कि फ्रेश हवा भी मिलेगी
1: जी।
2: और अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक खेती होती थी वो जैविक ही होता था
1: जी,
2: लेकिन धीरे धीरे लोग चूंकि मार्केट में जाना है, सामान को सस्ते में बेचना है, प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, तो धीरे धीरे अनजाने में ही सही लेकिन किसान धीरे धीरे रासायनिक की तरफ चलाता गया
1: जी।
2: और आज उनकी मजबूरी बन चुकी है तो वो रासायनिक करते हैं, लेकिन हमने शुरू से अपने जमीन को ऑर्गेनिक ही रखा है
1: जी।
2: चूंकि हमारे पिताजी का भी कहना था कि हमें स्वस्थ रहना है तो वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं और इसलिए वो जैविक ही खेती करते थे, तो अभी भी मैं जैविक ही करता हूँ।
1: लोग उत्पादन के नज़र से उसमें रासायनिक डालते गए और उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो ये काम करते गए हैं। और ऑर्गेनिक खेती जो कि भले थोड़ा स्लो होता है
2: जी,
1: और सबकी अपेक्षा मान लीजिए वो 3 महीना में होता है तो मान लीजिए ये 40 दिन में हुआ या 45 दिन में उसका उत्पादन हुआ, थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये लंबा समय तक के लिए होता है। इससे ऑर्गेनिक खेती से मिट्टी को क्या फ़ायदा होता है?
2: मिट्टी में जो है सर जैसे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बना, अभी तो सबको जान गया कोरोना के समय में
1: जी,
2: कि रोग प्रतिरोधक क्षमता

0: व्यक्ति से जो उत्पादन होता है वो चीज खाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ जो भी शरीर को चाहिए पोषक तत्व वो मिलेगा ही, जो कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत बढ़िया होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ाता है। अभी आप जो खेती कर रहे हैं क्या क्या चीज लगाए हुए हैं ऑर्गेनिक खेती के?
1: हमारे यहाँ सर नेनुआ लगा हुआ है और झिंगी लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है, मिर्च लगा हुआ है, मकई लगा हुआ है और ये भिंडी भी है, अभी फिलहाल इतना ही लगा हुआ है।
0: अच्छा, जैसे नॉर्मल खेती में जो होता है खेत का तैयारी किसान करते हैं, उसमें एक एकड़ का मान लीजिए खेत है, उसमें गोबर खाद डालते हैं, वो तैयार अपना खेत करते हैं। ऑर्गेनिक जब लोग करते हैं तो उसमें खेत को तैयार किस तरह करते हैं, क्या डालते हैं
1: खेत में? सर हम लोग ये घन जीवामृत बनाते हैं
0: जी।
1: गोबर जो होता है, गाय का गोबर जब ताजा होता है तो उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं
0: जी,
1: साथ में उसमें मीथेन गैस भी होता है
0: जी,
1: जिसके वजह से नुकसान होता है
0: जी,
1: पर 2-3 दिनों में वो मीथेन गैस बाहर निकल जाता है
0: जी,
1: और तब वो हमारे इस्तेमाल के लायक होता है
0: जी।
1: तो हम जीवामृत बनाते हैं और जीवामृत का स्प्रे करके सड़े गले पदार्थों पे या गोबर पे छिड़क के उसको घन जीवामृत बनाते हैं, तैयारी करते हैं सर खेत की
0: जी।
1: तो खेत की तैयारी समय घन जीवामृत डालते हैं उसमें
0: जी हाँ। तो ये घन जीवामृत में क्या क्या होता है, कैसे प्रोसेस इसका क्या होता है, बनाते कैसे हैं?
1: जो जीवामृत हम लोग बनाते हैं सर उसमें गुड़ है
0: जी,
1: है ना, चार तरह की दालें हैं और उसमें गौमूत्र, मतलब अगर हमको 200 लीटर बनाना है तो उसमें 10 लीटर गौमूत्र होता है, 10 लीटर गोबर होता है मात्र
0: जी,
1: 200 लीटर पानी होता है, 250 ग्राम गुड़ होता है और 4 तरह के दलहन कोई भी जो आपके यहाँ सुविधा आसानी से सस्ते में मिल जाए
0: जी,
1: उसको डालते हैं।
0: और दलहन कोई भी हो सकता है?
1: कोई भी दलहन हो सकता है, प्लस में उसमें जैसे कि हमारे यहाँ तांबा है, पीतल है, लोहा है, इन चीजों को भी उसमें डुबा के रखते हैं ताकि उनका भी तत्व उसमें आ जाए पानी में खींचे, फिर ऐसे हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है
0: जी।
1: और वो जीवामृत को क्या करते हैं कि गोबर का ढेर बना के उस पर हम लोग स्प्रे करते हैं, 40 से 45 दिन में वो घन जीवामृत में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह
0: जी जी,
1: जैसे वर्मी कंपोस्ट हमारा होता है। तो उसको हम लोग डीएपी की जगह से, डीएपी का जहाँ इस्तेमाल होता है उसके जगह पे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं
0: जी, और खेत में पूरा डालते हैं जिसके माध्यम से खेत का मिट्टी भी बढ़िया हो जाता है और बहुत सा बीमारी भी उसमें नहीं आता है।
1: और फसल जब तैयार होने लगता है तो जब निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें भी लोग यूरिया का इस्तेमाल करता है, हम लोग उसमें भी घन जीवामृत डालते हैं और एक एक सप्ताह में जीवामृत का स्प्रे करते हैं जिससे कि वो बच जाता है कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से भी और पौधा भी अच्छा रहता है
0: जी हाँ। अच्छा, ये तो हम लोग मिट्टी का बात कर लिया, बीज इसका कैसा होता है, नॉर्मल जैसा बीज होता है वैसा ही होता है कि
1: बीज? एक्चुअल में सर 60% बीज तो हमारा अपना है
0: जी हाँ,
1: क्योंकि अभी देखिए टमाटर है तो टमाटर हाइब्रिड आता है
0: जी,
1: जो खाने में कैसा लग रहा है ये हम आप सभी वाकिफ हैं
0: जी,
1: लगता ही नहीं कि कहीं से हम टमाटर खा रहे हैं
0: जी।
1: हमारे यहाँ 6 से 7 तरह की टमाटर, मतलब बीज को पहले बिलौती बोलता था तो उस तरह का बीज मेरे पास है
0: जी,
1: उसका उत्पादन बहुत कम है तो हम लोग खाने के लिए लगाते हैं। और हमारे कुछ कस्टमर हैं शहर के अच्छे हैं, वो डिमांड करते हैं ऑनलाइन तो उनको सप्लाई करते हैं, मार्केट नहीं ले जाते
0: जी हाँ। यहाँ आपने बात किया ऑनलाइन का, जो कि बहुत आज के समय में ऑनलाइन बोला जाए तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ये नाम भी फेमस हुआ है, चाहे वो बच्चों का पढ़ाई हो ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे किसान जो माल बेच रहे हैं ई नेम पोर्टल पे उसके माध्यम से। तो ये आप लोग जो बोले आपकी ऑनलाइन पद्धति, जब आपका माल तैयार हो गया मान लीजिए, तो ये किस तरह ये बेचते हैं, क्या ऑनलाइन में आप किस तरह जुड़ेंगे ऑनलाइन?
1: फिर मुझे प्ले स्टोर पे दिखा माई दुकान ऐप
0: जी,
1: तो मैंने उस पर अपने आप को रजिस्टर किया और उसी के माध्यम से मैं लोगों तक संपर्क बना पाया, अपना एक ग्रुप बना रखा हूँ, कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे, कभी इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी, जो हमारे अच्छे कस्टमर हैं जो खुद से अपना नंबर देते हैं कि मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो ऐसे भी हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा बन गया है और मैं रोज अपनी जानकारी उनको देता रहता हूँ, वहाँ से ऑनलाइन मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है।
0: लोगों में एक मानसिकता भी अब आ गई है, भले ही दूसरा चीज जो हम खरीद रहे हैं मान लीजिए वो 10 रुपया है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती जो हमारे शरीर को फायदा पहुँचाएगा, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, उसको भले 40 रुपया हमको पे करना पड़ेगा 1 किलो का हिसाब से, तो उसमें लोग पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और आपकी बात को वो लोग समझे, क्योंकि आप बाजार में बेच रहे थे वो आपकी बात को नहीं समझ रहे थे, आप ऑनलाइन में आए और वो लोग आपकी बात को समझे और आपका जो बिजनेस है वो रन भी हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन रन हो रहा है और लोग अब इसमें समझ गए हैं कि हाँ कम खाइए बढ़िया खाइए।
1: तो ये खेती में बिजनेस के तौर पर नहीं देखता, इसको मैं सेवा के तौर पर देखता हूँ।
0: जी
1: अभी आप देखेंगे सर,

0: एक एक घरों में दवाई का इतना ज्यादा खर्चा है, कई कस्टमर मुझे बोलते हैं इतना महंगा सब्जी कौन लेगा यार। मैं उनको बोलता हूँ सर अगर आप सब्जी सस्ता खाएंगे तो ये पैसे आप डॉक्टर को देंगे। खैर डॉक्टर कहीं कहीं अस्वस्थ हैं आप, मैं आपको स्वस्थ करने आया हूँ, बस खाली पैसे का ट्रांसफर है। आप जो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़े दिन सब्जी में इन्वेस्ट कीजिए, ऑर्गेनिक खाइए तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। और खास करके मुझे देख के और भी किसान लोग प्रेरित हों और वो भी करें, क्योंकि हमारी प्रकृति जब शुद्ध होगी, हमारा आबो हवा सही होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। केवल हम ऑर्गेनिक करें इससे पर्यावरण सुधर नहीं सकता, लेकिन हमारे देखा देखे अगर सब लोग करेंगे, मेरा जब 40-10 का सामान 40 में बिकेगा तो बगल में बैठा हुआ किसान भी प्रेरित होगा कि हम भी उगाएंगे।
1: जी तो धनंजय जी, ये बहुत अच्छा जानकारी आपने दी किस तरह ऑर्गेनिक खेती के बारे में, और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से लोग अपना रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है,
1: कुछ पैसा हमारा ज्यादा जरूर लगेगा लेकिन वो दवा में पैसा नहीं लगेगा, आपका सब्जी में लगेगा, जो भी चीज आप ऑर्गेनिक खाते हैं उसमें लगेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक चीज खाते हैं तो आपको दवा में पैसा नहीं देना पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: और आपका शरीर भी बढ़िया रहेगा। धनंजय जी, इतना बढ़िया जानकारी आप हमारे श्रोता भाई बहन को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हम इन जानकारी सुना लिए ऑर्गेनिक खेती क्या है और उसका फायदा क्या है उसके बारे में आज जानकारी देवा हलथिन धनंजय कुमार, तो बढ़िया जानकारी दिलथिन। आशा कर रही है कि किसान भाई बहन ये जानकारी सुनकर जरूर लाभान्वित होते। और देखा अब हम इनके समापन चर्चा की ओर बढ़ लिए, और समापन चर्चा में आज है कृषि अवसंरचना निधि क्या है। तो एक देखा इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रामीण बोले, ये भारत सरकार द्वारा जो है एक शुरुआत कर वित्तीय वर्ष 2021 में, और देखा ई जो है 32-33 तक ई योजना तक देश में लागू रहता है। और ई योजना में देखा कि क्या हुआ है कि बहुत सा किसान जो है मान लें अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे या और कोई बड़ा काम करना चाहे है तो नहीं कर पाए है, लेकिन ई योजना के मदद से कि 2 करोड़ तक के जो ऋण है ये 3% ब्याज दर पे किसान के मिला है, और ई योजना के लाभ लेकर के किसान अपन आगे के कृषि से जुड़ल काम कर सका है। अब देखा हम इनके पास इतना समय जरूर है कि हम इन एगो आर गीत ना सुन सके, तो सुने ही ये गीत।

0: खेती बारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को है प्रादेशिक

0: शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रगति और चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब निर्माण, भंडारण और तस्करी पर हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच प्रभावित करने की आशंका जताते हुए जमाल अहमद को जल्द पदमुक्त करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रामगढ़ जिले को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह पुरस्कार डॉ. विश्वनाथ राव और गोला की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपराजित ने प्राप्त किया। जिले के उपायुक्त ऋतु राज ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण देखभाल सरकारी योजनाओं से उनको लाभान्वित करने और जननी सुरक्षा योजना से उन्हें आच्छादित करने के परिणाम स्वरूप यह पुरस्कार मिला है। और गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही हमारी सभी बहनों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। बहनों, मौसम है बारिश का और कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन की हरियाली और झमाझम बारिश का आनंद तो सभी लेते हैं, लेकिन बरसाती मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना। मुख्य रूप से पीने के लिए सुरक्षित और साफ पानी का इस्तेमाल करें आप सभी। बॉयल या उबला हुआ पानी सबसे बेहतर होता है। बाहर के खुले खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। सब्जी और फल को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाएं जो घर पर बना हो। खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह जरूर धोएं। मच्छर से बचना भी जरूरी है। अपने घर के आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें और गड्ढे या टूटी फूटी चीजों में पानी जमा ना होने दें। खुद को और अपनों को रोग से बचाव करें, स्वस्थ रहें। बहनों, कार्यक्रम में आगे कुछ और होंगी जानकारी भरी बातें। फिलहाल वक्त को संगीतमय वातावरण में घुल जाने दीजिए। आइए इस पल को थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं।

बहनों, भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। यह एक छोटी बचत योजना है जिसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। यह एक कम जोखिम वाली जमा योजना है जिसमें सरकार मूलधन की गारंटी देती है और ब्याज का भुगतान प्रत्येक तिमाही में निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्चों को

0: पूरा करना, साथ ही शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर यह पहल महिला सशक्तिकरण को मजबूत करती है और भविष्य में आत्मनिर्भरता की परिकल्पना में योगदान देती है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं। प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है। इस खाते में जमा करने की न्यूनतम राशि 250 रुपये और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इसमें पैसे जमा करना अनिवार्य होता है। इसकी ब्याज दर 8.2% है। यह खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर मैच्योर होता है। यदि बालिका चाहे तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 50% तक निकाल सकती है। किसी भी अधिकृत सरकारी बैंक या नजदीकी डाकघर में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। बहनों, ये तो हुई सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी कुछ खास बातें। आगे आपको सुनाएंगे वार्ता, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता। विषय है बालिकाओं के शिक्षा में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार हैं निशा सिन्हा।
2: बालिकाओं की शिक्षा में महिलाओं का योगदान। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य अंग है, चाहे वह बालक हो या बालिका। संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है, नास्ति विद्या समम चक्षुर नास्ति मातृ समो गुरु। अर्थात दुनिया में विद्या समान नेत्र नहीं और माता के समान गुरु नहीं है। यह बात पूर्ण रूप से सच है कि बालक या बालिका के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। अतः अगर माता सुशिक्षित हो तो अपने पुत्र और पुत्री के भविष्य को एक खूबसूरत आकार देगी और उसे अपने देश का एक सफल और सकारात्मक नागरिक बनने में सहयोग करेगी। हम जानते हैं कि एक शिक्षित महिला में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है, जो उसे एक बेहतर माँ, बहन, पत्नी, कर्मचारी और देश का उत्तम नागरिक बनाती है। शिक्षित महिला अपने भविष्य को सही आकार देने में अधिक सक्षम होती है। शिक्षित महिलाएं काम करने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण गरीबी को कम करने में सक्षम है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसलिए हमारे देश की तरक्की, उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। हमारे देश भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई ज्योतिराव फुले, जो एक समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री थी। सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी निवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। इनका विवाह 1840 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले से हुआ था। महात्मा ज्योतिराव फुले स्वयं एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक एवं क्रांतिकारी थे। शुरुआत में सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाया, लिखाया और सिखाया। बाद में सावित्री बाई ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे देश की प्रथम शिक्षिका थी। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उस वक्त देश में बालिकाओं की दशा दयनीय थी, उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। इस रीत को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्री बाई ने बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की, जो बहुत सफल रही। यह भारत में बालिकाओं के लिए खुलने वाला पहला स्त्री विद्यालय था। अर्थात इस तरह कई समाज सुधारकों जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि के प्रयासों से हमारे देश में बालिकाओं की शिक्षा को अग्रसर किया गया है। अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंपटीशन कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बालिकाओं की शिक्षा का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बालिकाओं का काम घर तक ही सीमित है और उन्हें लगता है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करना पैसा व्यर्थ करना है। यह विचार गलत है, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा समाज में बदलाव ला सकती है। एक शिक्षित बालिका जो युवती बनकर पुरुषों के काम और बोझ को बांट सकती है। शिक्षा लेकर एक बालिका बड़ी होकर एक सफल लेखिका, शिक्षिका, वकील, डॉक्टर तथा वैज्ञानिक आदि के रूप में देश की सेवा कर सकती है। आर्थिक संकट के युग में बालिकाओं की शिक्षा एक वरदान है। मेरे अनुसार एक शिक्षित महिला अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की बालिकाओं की शिक्षा में सफल योगदान प्रदर्शित करती है। शिक्षा महिलाओं की सोच के दायरे को बढ़ाती है, जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती है। शिक्षा एक महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है, ताकि वह अपने अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण को पहचान सके। शिक्षित महिलाएं बालिकाओं को हर प्रकार की शिक्षा देने में सक्षम होती है। वह उनको उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव के बारे में अच्छी प्रकार शिक्षा दे सकती है। बालिकाएं अपनी रक्षा कैसे करें अगर कोई विपरीत स्थिति उनके साथ आ जाए, तब भी ये सारी जानकारी उन्हें एक शिक्षित महिला या उनकी माँ, बड़ी बहन या परिवार की अन्य महिला सदस्य दे सकती है। एक शिक्षित माँ या फिर बालिकाओं को उनके स्कूल में शिक्षिका द्वारा सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, क्या होता है गुड टच और बैड टच, ये सब स्कूल में सिखाया जाता है। आजकल सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है स्कूल में। कभी कभी महिला चिकित्सक को स्कूल में बुलाकर बालिकाओं को एडोलेसेंस एज में होने वाले शारीरिक, मानसिक बदलाव को कैसे सुविधापूर्वक संभाला जाए बतलाया जाता है। वे

0: बालिकाओं को सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा, यौन शोषण के बारे में भी सिखाती हैं और उन्हें उससे सतर्क होने का भी मार्ग बताती हैं। इन दिनों हमारे सोशल मीडिया के अनेक चैनल्स में धारावाहिकों के माध्यम से बालिका शिक्षा को अग्रसर किया गया है। हमारे देश में मास मीडिया, सोशल मीडिया तथा अनेक साधनों द्वारा बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है, ताकि देश में बहुत सारे ऐसे गांव, कस्बे हैं जहां बालिकाओं की शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता, उन्हें ऐसा करने से रोक सके। बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी को फोन कॉल करने के लिए या फिर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बालिकाओं को अंक तथा अक्षर का ज्ञान अति आवश्यक है। घर में किसी को बीमार पड़ने पर दवाई भी देने के लिए दवाई का नाम पढ़ना जरूरी है, जो कि शिक्षा के अभाव में नहीं हो सकता। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के विकास के लिए। शिक्षित महिलाओं के वजह से बाल मृत्यु दर पर जोखिम भी कम होता है। मातृ मृत्यु दर भी कम करने में बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण है। बाल विवाह को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए तथा घरेलू हिंसा और यौन हिंसा को कम करने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। हमारे देश में बालिकाओं को जन्म लेने से पहले ही कुछ लोग उन्हें माँ की कोख में ही मार डालते हैं। वे अल्ट्रासाउंड द्वारा ये पता कर लेते हैं कि उनके गर्भ में बालक है या बालिका। यदि बालिका होती है तो उसे वहीं गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, जो कि जघन्य अपराध है। बालिका का जन्म नहीं होगा तो हमारे देश का भविष्य कौन बनाएगा? इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना अति अनिवार्य है। और हमारे देश का यह नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अतः अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जो कल तक थी लाचार, पड़ी थी घर में बेचार, थी अनजान शिक्षा के अधिकार से, आज वही खड़ी है लिए हाथ में कलम का हथियार।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, बालिकाओं की शिक्षा में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार थी निशा सिन्हा। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ और जानकारी की बातें। जनवरी 2017 में पीएम मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। यह केंद्र की सरकारी योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। बहनों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों योजनाओं से पहली बार गर्भवती होने वाली महिला के खाते में कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके, साथ ही अन्य आर्थिक मदद उन्हें मिल सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे पहली गर्भावस्था के समय आवेदक की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, महिला भारत की निवासी हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला या आंशिक या पूरी तरह से जो विकलांग महिलाएं हैं जिनका भी पीएल राशन कार्ड भी है, और ई श्रम कार्ड जिन महिलाओं को प्राप्त है, किसान सम्मान निधि या आयुष्मान कार्ड के तहत लाभ लेने वाली महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं। मनरेगा जॉब कार्ड प्राप्त महिलाएं, साथ ही इनके परिवार के प्रति आय अगर 8 लाख रुपया से कम है तो ये लाभ ले सकती हैं, या फिर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य कैटेगरी में इनका नाम हो। यह योजना महिलाओं को अपने पहले 2 जीवित बच्चों के लिए लाभ प्रदान करती है, जिसमें दूसरी लड़की होना अनिवार्य है। पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन वह लड़की होनी चाहिए। इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पोषण सहायता तो मिलती ही है, साथ ही इसके द्वारा माताओं और शिशुओं दोनों के लिए समय पर टीकाकरण करने के लिए जोर दिया जाता है और प्रोत्साहित भी किया जाता है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हों।

बहनों, वक्त का पहिया तो घूमता ही रहता है, तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम अंगना से अब दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:30 और 25 सेकंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे फिल्म अग्नि साक्षी में। सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ओम शांति ओम से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

वंश फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम का गाया हुआ ये गीत।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:54 हुए हैं। थोड़ी देर में संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति।

0: ने राजस्व में वृद्धि और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश। राज्य के महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने विधि पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ। सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर। उच्च स्तरीय बैठक में 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और रांची में डोरंड कप की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को करेंगे रांची लीग चरण का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 33 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इन पार्कों का चयन राज्यों के प्रदर्शन और पहल के आधार पर चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उत्पाद विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति पूरी करने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर ठोस योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। राज्य सरकार ने सरकारी न्यायालय प्रकरणों के समग्र और प्रभावी डिजिटल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज विधि पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया। महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल राज्य में मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पोर्टल आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, दक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया है। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में एम्बुलेंस खरीद, संचालन और निविदा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर श्री सिंह ने अधिकारियों को नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि इन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जमाल अहमद को जल्द पदमुक्त करने की भी मांग की। बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले के मुख्य आरोपी कौशल कुमार पांडे की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 27 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगा। यह मामला बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज उपराजधानी दुमका में संताल परगना प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था तथा श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान AI का इस्तेमाल किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि श्रावणी मेले को देखते हुए देवघर और दुमका में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
2: 2 महीना तक मेला चलेगी और इसमें काफी भीड़ होगी, तो अपराध नियंत्रण की भी आवश्यकता है। सो जो भी आवश्यकता है दोनों साधन का और बल का, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को तो बिल्कुल नजर रखी जाएगी ताकि हम लोगों का कोई घटना ना घट पाए।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रामगढ़ जिले को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जिले को यह सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है।
3: सुरक्षित मातृत्व अभियान में जिला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड से सराहा गया है। इसमें विभिन्न इंडिकेटर होते हैं जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके गर्भवती होने से लेकर के डिलीवरी होने तक उनके ANC होना, उनका टीकाकरण होना, इन पूरी प्रक्रियाओं में हम लोगों ने टाइम टाइम पे अलग अलग इंडिकेटर्स में फोकस किया है। इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी इस पे कार्य हुए हैं।
0: गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज सिद्धो कानो कृषि और वनोपज जिला सहकारी संघ की वार्षिक बैठक हुई। बैठक में जिला वन पदाधिकारी मनीष दुबे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को अधिक से अधिक वनोपज का लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
4: ये वार्षिक अधिवेशन है जहाँ पे हम लोग पिछले साल जो भी चीजें हम लोगों ने किया है, यहाँ पे जो हमारे जनघारी है, उनके समक्ष हम बातें को रखते हैं। आगे आने वाले समय में जो पिछले आयु वाला जो साल है, हम लोग किन किन मुख्य बातों पे ध्यान रखेंगे, बहुत से सुझाव इसमें आए उनपे भी हम लोगों ने नोट किया है।
0: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहली बार आयोजित डूरंड कप को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्टेडियम में रंग रोगन और दर्शकों के बैठने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर रांची के SDM कुमार रजत और यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने आज स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिस जवान मुस्तैद रहेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डूरंड कप के रांची संस्करण का उद्घाटन 26 जुलाई को करेंगे। मौसम। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 30 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य के दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी, मध्य और निकटवर्ती पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, राजस्व में वृद्धि और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश। राज्य के महाधिवक्ता रोहित आशय रॉय ने विधि पोर्टल 2.0 का किया शुभारंभ। सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर। उच्च स्तरीय बैठक में 720 नई एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दुमका में श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और रांची में डूरंड कप की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को करेंगे रांची लीग संस्करण का उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे।

0: प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: चतरा के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र दांगी ने अपनी मेहनत और वैज्ञानिक सोच से ICR द्वारा अनुशंसित धान की किस्म CR320 का प्रयोग कर खुद के साथ सैकड़ों किसानों की भी किस्मत बदलने का काम किया है। बीज निर्यातक किसान के तौर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुके किसान वीरेंद्र ने बताया कि
2: जब से कृषि विभाग के पदाधिकारियों से जुड़ा हूँ तब से प्रेरित किया गया कि आप अपने मिट्टी में बीज उत्पादन करें। ICR चावल अनुसंधान केंद्र का यह CR320 है जो उत्तम किस्म के बीज है और उसी बीज को ज्यादा प्रचार प्रसार मैंने किया है। अपने जिला में 100 किसान को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पिछले साल बंटवाया था। इसी के उपलक्ष्य में विस्तार कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे मतलब यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI में चतरा जिले ने सुधार करते हुए विशेष प्रयास की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक में चतरा जिले को 256वां रैंक प्राप्त हुआ है। इधर एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि अधिकारियों की सरकार चल रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि
3: पार्टी के संदर्भ में और पार्टी के जो मेरा बेसिक दायित्व है कि DLM जो पार्टी का बनना चाहिए वेस्टेड पार्टी के रूप में राष्ट्रीय पार्टी को प्राप्त है और रीजनल के रूप में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय को प्राप्त है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि एकदम बूथ लेवल पर हम अपना एजेंट तैयार करें, अपना प्रतिनिधि तैयार करें।
1: 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 1970 और 80 के दशक तक चतरा जिला अपने घने जंगलों और बाघों की मौजूदगी को लेकर भी चर्चित रहा है। चतरा के जंगल सीधे तौर पर पलामू टाइगर रिजर्व के बफर जोन और कॉरिडोर के तौर पर जुड़े हुए हैं। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के जिला पदाधिकारी मुकेश कुमार ने इस पर बातचीत के दौरान कहा कि
4: ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो 6th साइकिल है उसका रिजल्ट जो 2026 में पब्लिश किया जाना था, इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अंतर्गत जो सर्वेक्षण का काम चल रहा था, इसमें चतरा में भी काम चल रहा है। जो उसके अंदर फेज वन का सर्वे था वो कंप्लीट करा लिया गया था, लेकिन कुछ सबमिट्स में पुनः सर्वे करवाने का जो हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें काम अभी चल रहा है। कुछ जो स्पॉट्स है वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए जाने हैं फिर से। चतरा का जंगल जो है झारखंड में टाइगर्स के कॉरिडोर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलामू टाइगर रिजर्व से जो कॉरिडोर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ती है वो चतरा से होकर ही जाता है, इसलिए यहाँ के जंगल इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने लोकसभा में केंद्र सरकार से जिले के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अलग समर्पित कोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना सर्वोपरि है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

अरिजीत सिंह को आपने सुना फिल्म छिछोरे में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन

0: एवं संकलन है रानी सहाय का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार और कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: खेल गतिविधियों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शांसे में आप तमाम खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए रानी का प्यार भरा नमस्कार जोहार। दोस्तों, खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास और सामाजिक विकास के लिए एक संपूर्ण उपाय है। खेल के खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। यह हमारी मानसिक तनाव को कम करता है और हमें खुश रखता है। खेल एक महान सामाजिक संगठन है। जब हम खेल खेलते हैं तो हम साथी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप में संगठित होते हैं और टीम वर्क करते हैं। इससे सामाजिक और संगठनात्मक कौशल विकसित होते हैं और हम अन्य लोगों के साथ सहयोग करने का कौशल बनाते हैं। खेल हमें नेतृत्व के गुण विकसित करता है, हमें संघर्ष के साथ सामर्थ्यपूर्ण व्यवहार करने का मौका देता है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे कराटे खेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कराटे एक बेहद अनुशासित और आत्मरक्षा के लिए बेहतरीन मार्शल आर्ट है। दोस्तों, आज के समय में खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। कराटे आपको विपरीत परिस्थितियों में अपनी रक्षा करने का हुनर सिखाता है। इसके अभ्यास से शरीर लचीला, मजबूत और फुर्तीला बनता है, साथ ही वजन नियंत्रित रहता है। कराटे में धैर्य और ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। यह तनाव कम करता है और पढ़ाई या काम में ध्यान लगाने में मदद करता है। जब कोई नई तकनीकें सीखते हैं और बेल्ट में आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कराटे खेल प्रशिक्षक सिहान उदय कुमार, ऑल इंडिया सेशिन काई कराटे संघ के उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी। आपका खेल गतिविधियों के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जोहार। उदय कुमार सिहान जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाँ, इस खेल से आप कब से जुड़े हैं और अभी तक कितने खेल प्रेमियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं?
2: मैंने बचपन से ये मुझे मार्शल आर्ट सीखने का शौक था और मैंने 1986 से लगभग शुरू किया था ये कराटे सीखना और 92 में मैंने ब्लैक बेल्ट लिया था और उसके बाद मुझे प्रशिक्षण देने का बहुत सारा अवसर मिलते गया और मैंने लगातार प्रशिक्षण देना शुरू किया और इस संदर्भ में अभी तक लगभग आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 60,000 लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दे चुके हैं और उसमें सैकड़ों लड़कियां प्रशिक्षक बन चुकी हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे लोग मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर खेल करके गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके भी आए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराटे में तो कितने मेडल है मैं उसका गिनती नहीं कर सकता, लेकिन लगातार मैं प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं साथ साथ में गांव के सुदूरवर्ती इलाके जहां पर बच्चियां लोग जानती भी नहीं वहां भी जाके मैंने प्रशिक्षण दिया है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम ये जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन रह चुके हैं, आपने किनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया है?
2: मैंने लगभग 86 से मैंने कराटे शुरू किया लेकिन उस दौरान मुझे बहुत सारे गुरु का सानिध्य मिला, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन मैं सबसे बड़े मेरे गुरु हैं जिनके छत्र छाया में, जिनके निर्देशन में, जिनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा जी। वो विश्व कराटे संघ के कोच हांसी प्रेमजीत सेन के द्वारा ही मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त के आगे बढ़ा। वही हमारे गुरु है, वही हमारे गॉडफादर है।
1: जी जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं?
2: मैं बड़ा बाजार हजारीबाग।
1: अच्छा, आपके गुरु भी रहने वाले यहीं के हैं, झारखंड के?
2: वेस्ट बंगाल के हैं जी, वेस्ट बंगाल के जी। और ऑल इंडिया सेशन का कराटे डू फेडरेशन के वो चीफ टेक्निकल डायरेक्टर हैं और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के कोच और जज भी।
1: अच्छा, आप ये बताइए अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें।
2: क्योंकि हम लोग उस समय जब ट्रेनिंग करते थे तो टूर्नामेंट बहुत कम होता था उस समय, फिर भी हम लोग अपने स्तर से जो भी गेम होता था हम लोग उसमें खेलते थे, आगे बढ़ते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है मुझे प्रशिक्षण देने का बहुत शौक था और मैंने प्रशिक्षण देने का शौक इस तरह कदर किया कि मैं लगभग लगभग अपने जो मेरी ख्वाहिश थी कि टूर्नामेंट्स खेलना हो तो धीरे धीरे जब टूर्नामेंट होने का जो सिस्टम वो शुरू हुआ बहुत सारे फेडरेशन से एसोसिएशन का जब बनने लगा और हमेशा टूर्नामेंट होने लगा तो उसके बाद बच्चे लोग हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए और सभी लोग स्टेट नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल।
1: सिहान उदय जी, कराटे सीखना क्यों जरूरी है? अभी के समय में अधिकतर देख रहे हैं कि महिलाएं भी जो हैं वो काफी अधिक संख्या में कराटे सीख रही हैं आत्मरक्षा के लिए, तो कितना जरूरी है कराटे सीखना?
2: जो माहौल है उसके अनुसार आपको ये इसको तीन तरह से लेना होगा। पहला है कि मैं इसे जोड़ के देख रहा हूँ स्वास्थ्य। अभी आप जितने गेम देखेंगे इंडोर हो गए, सब मोबाइल में, बच्चे लोग निकलते नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका एक मार्शल आर्ट ऐसा गेम है जिसमें बच्चे लोग उत्साहित होकर अरे ये मार्शल आर्ट है, ये युद्ध कला है, इसको हम सीखेंगे। तो अगर बच्चे इसमें सीखते हैं अपना क्योंकि कराटे करने से उसका फिजिकली और जो मसल्स होता है, बोन होता है, वो मजबूत होता है और इसमें बहुत सारा टेक्निक्स है, काता है, फाइट है, बेसिक है, तो इससे करने से क्या होता है कि बच्चे लोग स्ट्रांग बनते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिफेंस अपना सीख लिए, तो ये जरूरी है। और प्लस सेकंड आप देख रहे हैं कि लड़कियों लोग के लिए तो कराटे कंपल्सरी इसलिए है कि समाज में जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। और मैं बता रहा हूं कि अभी ज्यादातर लड़कियां ही कराटे सीख रही हैं और हमारे जितने मेडलिस्ट हैं जो मेडल लेके आ रहे हैं उसमें ज्यादातर लड़कियां भी हैं। और अभी का मैं बता रहा हूं, अभी एशियन कराटे फेडरेशन का टूर्नामेंट में इंडिया की ही गोल्ड मेडल वो लड़की ही लाई।
1: और आगे कराटे की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी?
2: देखिए कराटे का शुरुआत अगर लोग बोलते हैं जापान, लेकिन आप सच पूछिए तो यहाँ पर कराटे की शुरुआत भारत में ही हुई, क्योंकि बौद्ध भिक्षु लोग हथियार नहीं उठाते थे तो उनको बोला जाता था कि आप हथियार जो है अगर नहीं उठाएंगे तो अगर कोई दुश्मन आ रहे हैं तो आप किस सामना कैसे करेंगे। तो बौद्ध भिक्षु ने हाथ से आक्रमण सुरक्षा के लिए आक्रमण करने के लिए अपना हाथ और पैर का यूज करने लगे। यही यही कला जो हो गया ये कराटे। कराटे मीन्स खाली हाथ, करा मीन्स खाली, आटे मीन्स हाथ, ये जापान का वर्ड है, लेकिन बौद्ध भिक्षु का ही किया हुआ है क्योंकि बौद्ध भिक्षु कभी शस्त्र नहीं उठाते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने रक्षा तो करना है तो अपना हाथ और पैर को मजबूत किए, उसी से लड़ने लगे और ये जाके नाम आगे हो गया कराटे।
1: कराटे सीखने वाले खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है?
2: इसमें जो स्टार्टिंग करते हैं कराटे में उसको कोहाई बोलते हैं, उसके बाद उसको सेंपाई, फिर सेंसाई, फिर सिहान, इस तरह से उनका पोस्ट बढ़ते जाता है।
1: कराटे में अलग अलग रंगों के बेल्ट होते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है मेरे?
2: आप लर्निंग अगर कोई करते हैं जैसे नर्सरी क्लास से केजी में गया, केजी से यूकेजी, 1, 2, 3 फिर मैट्रिक पास किया, उसी तरह कराटे में व्हाइट बेल्ट है, फिर येलो बेल्ट है, ऑरेंज बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, फिर ब्लू बेल्ट है, उस पर्पल बेल्ट है, ब्राउन बेल्ट है, फिर मास्टर डिग्री है जो है ब्लैक बेल्ट, यानी वो निपुण हो गया, वो मास्टर हो गया कराटे में, ब्लैक बेल्ट लिया।
1: ब्लैक बेल्ट लेकर लोग काफी खुश भी होते हैं कि हमें ब्लैक बेल्ट मिल गया। जी, तो हम आपसे एक दो सवाल और भी करना चाहेंगे कि किस तरह से इस क्षेत्र में लोग आगे बढ़ सकते हैं?
2: अभी जितने भी डिफेंस के जितने भी निकलते हैं फॉर्म, आप उसमें देखेंगे चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आर्मी हो, उसमें कराटे का एक स्पोर्ट्स कोटा रहता है कि कराटे में जो मेडलिस्ट है उसका स्पोर्ट्स कोटा रहता है, तो ये उसमें भी काम आता है। और अभी तो क्या है कि इसमें सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो स्कूल में कराटे भी और साथ में जो प्राइवेट संस्था भी है स्कूल के, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे हर स्कूल में कराटे का क्लास हो,
1: तो ऐसे
2: हर विद्यालय में, ताकि एक रक्षात्मक शैली जो है ये हर लड़की लोग सीखे, हर बच्ची लोग सीखे,
1: बहुत जरूरी
2: हो गया है, क्योंकि आजकल छिनताई, लोगों का गलत धारणा विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसके लिए मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है। और इसका स्कोप एक और क्या है कि मैं बता दूं कि अगर मेरे पास, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं लगभग अभी 60,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, अगर उसमें सैकड़ों लड़कियां अभी प्रशिक्षक बनकर बहुत जगह में ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं बहुत सारे स्कूल्स में, तो ऐसे में उनको क्या हो रहा है कि अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उनको अच्छा एक सैलरी भी मिल रहा है, एक समाज मान सम्मान भी है, और उनके द्वारा भी तो बहुत सारे लोग सीख रहे हैं
1: जी, अभी तो, आप कहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं?
2: मैं अभी हजारीबाग स्टेडियम में प्रशिक्षण देता हूँ
1: जी,
2: वहाँ पर मेन ब्रांच वहीं पर है, और बाकी जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उस

0: बहुत जगह कॉलेज में, उसके बाद अपने अपने बहुत सारे ब्रांचेस वहां पर ट्रेनिंग देता।
1: अभी कितने लोग अभी सीख रहे
0: मेरे
1: हैं
0: पास
1: बच्चे?
0: अभी लगभग टोटल मिलाकर के सिर्फ क्लब में, स्कूल
1: जी
0: छोड़ करके,
1: जी जी
0: लगभग 1000 लड़के लड़कियां अभी सीख रहे हैं।
1: क्लब में,
0: हाँ, सिर्फ
1: स्कूल में
0: क्लब,
1: भी सिखाते हैं
0: स्कूल में
1: आप?
0: लगभग सारे स्कूल चलते हैं और सारे कॉलेज।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जीत की कहानी। बढ़ते हैं कार्यक्रम में प्रियांशु शेखर जी से, ये कैसे कराटे के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? आप कब से कराटे सीख रहे हैं?
2: मैं 9 साल से कराटे सीख रहा हूँ।
1: अच्छा, आप कहीं खेलने गए हैं नेशनल लेवल पे?
2: हाँ, नेशनल भी गया हूँ, दिल्ली खेलने गया हूँ, 2 बार गया हूँ, और 1 बार गोल्ड है और 1 बार सिल्वर था
1: जी। और इंटरनेशनल भी गए हैं क्या?
2: इंटरनेशनल में 2 बार गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है।
1: अच्छा, कौन सा बेल्ट मिला है आपको?
2: मैं ब्लैक बेल्ट में हूँ, फर्स्ट डैन।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगता है अभी आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है, सिवान उदयपुर के अंडर में प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगता है और खेलने में उनके अंडर।
1: आइए जानते हैं अंकित कुमार यादव से कराटे खेल में किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अंकित जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया।
1: आप कब से खेल रहे हैं अंकित जी कराटे?
3: जब हम 2 क्लास में थे 2016 में, तब से हम चालू किए थे खेलना।
1: अच्छा अच्छा, किससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?
3: हमारे यहाँ पे उदय सर है, सियान उदय कुमार, वो हम लोग सिखाते हैं। अभी तो बहुत सारी जगह पे खेले हुए हैं, स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, देहरादून, फिर कोलकाता, तमिलनाडु, ये सारे जगह पे खेले हुए हैं।
1: और कौन सा बेल्ट अभी हासिल हुआ है आपको, कौन सा बेल्ट मिला है?
3: अभी ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन में।
1: बहुत अच्छी बात है। आप जब आगे बढ़ रहे हैं अभी कराटे में, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है?
3: बहुत अच्छा लगता है अंदर से। जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, और उसको एक सही दिशा में डायरेक्ट करने के लिए जो जरूरी होता है, वैसा चीज हमको मिला था जब हम बच्चा से बड़ा हो रहे थे, और उस एनर्जी को हम एक डायरेक्शन दे पाए, उससे बहुत अच्छा लगता है हमको। हम अपने आप को बड़ा हेल्दी महसूस करते हैं इसको करते हुए, और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना उसमें खेलते हुए, दूसरों से जीतना बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद है जीतना हमको।
1: बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खेल टिप्स के बारे में। किसी भी खेल में बेहतर करने के लिए शारीरिक फिटनेस, मजबूत मानसिक स्थिति और सही तकनीक का होना सबसे जरूरी है। अपनी क्षमता को अधिकतम करने और चोटों से बचने के लिए हमेशा अच्छे या कोच के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। किसी भी खेल में महारत हासिल करने के लिए निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या में रोजाना अभ्यास को शामिल करें। आपके प्रदर्शन में ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन शामिल करें, ताकि शरीर को सही पोषण मिल सके। खेल के दौरान पानी की कमी होने न दें। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खेल अपडेट्स के बारे में। चार साल के इंतजार के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच एक बार फिर लौट आया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। 12 साल बाद ग्लासगो दूसरी बार इस बहुखेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। आगे हम आपको बताते चले, फीफा विश्व कप 2026 के समापन के बाद जारी ताजा फीफा विश्व कप रैंकिंग में नया विश्व चैंपियन स्पेन दुनिया की नंबर 1 टीम बन गया है। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीता और इसके साथ ही रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। अंत में हम आपको बताते चले, करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर शानदार वापसी करने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपनी सफलता का बड़ा श्रेय भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली को दिया है। सिंधु ने खुलासा किया है कि सबसे कठिन दौर में विराट की एक सलाह ने उनकी सोच बदल दी और उसी ने उन्हें फिर से चैंपियन बनने की राह दिखाई। ये थी देश दुनिया की हालिया खेल गतिविधियाँ। इसी के साथ खेल गतिविधियों के इस कार्यक्रम से

0: रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन था रानी सहाय का, प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कल आज और कल आपने सुना इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जवानी दीवानी फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

महबूब की मेहंदी आप सुन रहे थे। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है संसद समीक्षा के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है।
किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर। आप हैं झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, चेपाकाला बड़का गांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका। हजारीबाग पतरातू से आप हैं बेसिल खलखो, मधुरी तू, मीतू, रोहित, नदीम, मनीषा और परिवार के सभी सदस्य। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीज फातमा और शहनाज फातमा। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं दुश्मन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें हैं।

के रिडारी से आप हैं देवदत्त तिवारी, सचिदानंद तिवारी और मंजू बाला। हजारीबाग से संतोष कुमार, रश्मि कुमारी, रितेश कुमार, पूजा पांडे, दीपाली कुमारी, हर्षित कुमार और अभिनव कुमार। बेंगलोर से आप हैं टुक टुक और टिम टिम। मुंबई महाराष्ट्र से ये खत भेजा है विमल गुप्ता और वंदना गुप्ता ने। बड़कागांव रोड हजारीबाग शांति आश्रम से मानसी राज, ज्ञानशी राज, मिताली राज, प्रांजल राज, अर्पित और राजवीर राज। रांची से वीर शंकर, आकाश, सतीश, मीनू, मीका और उनके बहुत सारे दोस्त। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से आप है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। अर्जुनी से रानू साहू, उमेश साहू और पूजा साहू। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका।

सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत पसंद आप सबकी, ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से अमजद अली अब्बास आलम। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, कुमारी वली और कुमारी डब्लू। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार। आप हैं शंभुनाथ, शेखर पासवान और पंकज कुमार हजारीबाग से। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं रेशमी रुमाल फिल्म का गीत। आशा भोसले और मन्ना डे ने गाया है इस गीत को।

दोस्तों, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो लिख भेजिए अपने पसंद के गीत हमारे इस छोटे से पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, हजारीबाग, पिन कोड है 825301। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद आप सबकी, आप हैं पचमंदी रोड से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार हैं। ये है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। स्टेशन रोड झुमरी तिलैया से विजय शर्मा, मनोज मगधिया और अंशु मगधिया। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं उसने कहा था फिल्म का ये गीत। तलत महमूद और लता मंगेशकर ने गाया है इस गीत को।

माली टोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। रेलवे स्टेशन हजारीबाग से आप शमीम अहमद, शगुप्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, आरजू परवीन और नसीम अहमद। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, बिपाशा शर्मा और सुनीता शर्मा। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़।

सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जीना तेरी गली में इस फिल्म से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने। फरमाइश आप सबकी सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, आसमा, सालिया शोएब खान, मुस्तफा खान, राउफ और शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, ग्राम बगबुड़वा पत्थरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, उत्कर्ष नेताम, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी चाह से दीजिए अपनी दोस्त अंजना को इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। समाचार संध्या और न्यूज 8:09 के लिए हमारा
1: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट

0: इसे मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसा

0: मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
1: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे फिल्मकार की जिसने रुपहले पर्दे पर छेड़ा देशभक्ति का राग। मेरा

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

0: परिवर्तन।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। मेरा रंग

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए और दूसरा

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

कार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बना।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए। क्रांति

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुनें, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा। बस यही

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी सुनने वालों को अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने फिल्मी पर्दों पर अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिन्हें भूला नहीं जा सकता। भले ही आज वो आसमां में सितारों के बीच कहीं खो गए हैं, लेकिन जमीन पर हमेशा एक नायाब हीरे की तरह चमकते रहेंगे।

एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया, जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे महान और सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार की, जिनका नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ, तारीख थी 24 जुलाई 1937, जगह एबटाबाद। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कला प्रेमियों के लिए हर साल उनका जन्मदिन आता है और आता रहेगा। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद करते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप। आज कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सुन रहे हैं उन पर फिल्माए गए गीतों को, उन्हें हमारा नमन।

चार दशक से अधिक अपने करियर में उन्होंने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। 1957 से 1999 तक वे फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे।

1992 में पद्मश्री एवं 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए। 1968 में फिल्म उपकार के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में शामिल किया गया था।

फिल्म उपकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक कहानी और संवाद के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट में बेईमान, शोर, रोटी कपड़ा और मकान फिल्में भी शामिल हैं

दोस्तों, जब मनोज कुमार 10 वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण उनका परिवार उनके पैतृक गांव जंडियाला शेर खान से दिल्ली आ गया था। उन्होंने अभिनय करने से पहले हिंदू कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री पूरी की। 1949 में अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म आई थी शबनम। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने मनोज कुमार का नाम का किरदार निभाया था। इसी फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा।

फिल्मी पर्दे पर वो पहली बार आए 1957 की फिल्म फैशन में। पहली मुख्य भूमिका उन्हें मिली थी फिल्म कांच की गुड़िया में, जो रिलीज हुई थी 1961 में। कुछ फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्हें सफलता मिली फिल्म हरियाली और रास्ता में, जिसमें उनकी को स्टार थी माला सिन्हा। ये फिल्म आई थी 1962 में।

दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार राष्ट्रभक्ति से संबंधित फिल्मों में दमदार अभिनय के लिए भी जाने जाते थे, इसलिए उन्हें उपनाम दिया गया भारत कुमार। बतौर निर्माता और निर्देशक उनकी फिल्में हैं पूरब और पश्चिम, उपकार, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, पेंटर बाबू, क्लर्क और जय हिंद।

यूं तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक वक्त में सभी को समेटना मुश्किल है। बात चांद और सितारों की, सूरज और घटाओं की। जमी से आसमां तक का सफर आसान नहीं होता। चराग यहाँ बुझते हैं, लेकिन सितारे आसमां में चमकते हैं। रहे न राही तो क्या हुआ, याद उनकी अभी बाकी है।

अभिनेता मनोज कुमार साहब को हमारा नमन। इसी के साथ अब कार्यक्रम रजनीगंधा से अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता मनोज कुमार पर श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित उनके जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से।

कार्यक्रम एक फिल्म से में आप सुन रहे हैं यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म कभी कभी के गीतों को। इन गीतों के लिए संगीत तैयार किया खयाम ने।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:58 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझो में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
3: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
2: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranga, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Gundakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,000